0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हमारी web.com की पेशकश।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर।
3: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics.
7: इजतमाई दिफाई वायदन ते फौरी अमल कंदे सऊदी अरब के फौरी जरूरी फौजी कुवत फराम कई वेंदी ए खतरे के मोड़ देने लाए दिफाई तनसीबात नसब कई वेंदियूं। पाकिस्तान सऊदी अरब के खुद मुख्तियारी इलाकाई सालमियत लाए मुकम्मल हिमायत जो अजम मर्जा इजलास दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद के मक्का दिफाई इताद के पहरे सेक्रेटरी जनरल तौर मुकर्र की तौसीफ पुण कई वही। सऊदी अरब के यमन ते वडी बमबारी सऊदी के 100 जहाजन यमन में 334 ठिकाणन के निशानो बनायो सऊदी ए यमन के सरकारी फौज के कारवायन 1700 खां वधिक हूसी बागिन जी मारजी वया। यमनी फोर्सेस पारा आबी गुजरगाह बाबुल मंदब जो बीहर कंट्रोल हासिल करण जी दावा यमनी हुकूमत फौज के तर्जमान मूजिब हुसैन जे 1100 कारवाई कई जे दौरान 1700 सीबाइन। घर वजीर मोहसिन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात केपी में गवर्नर राज इमरजेंसी समेत अहम मामलों से गाल जरियन मूजिब वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात करे खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से ब्रीफिंग डिनी। मुलाकात दौरान सिंध जो सीनियर वजीर

0: शर्जील मेमण ऐं डॉक्टर आसिम बि मौजूद हुआ। मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली ज़रदारी खे गवर्नर केपीअ सां थींदड़ मुलाक़ात बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी। केपीअ जी सूरत हाल ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां ॿीहर सदर आसिफ अली ज़रदारीअ सां मुलाक़ात करण जो फ़ैसिलो। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म ऐं सदर विच में थींदड़ मुलाक़ात दौरान केपीअ जी सूरत हाल अपोज़िशन सां थियल ॻाल्हियुनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। केपीअ में गवर्नर राज या एमरजेंसीअ वारे ऑप्शन ते बि ॻाल्हियुनि करण जो इम्कान आहे।
1: आर्ग्यूमेंट मुल्क में जबरदस्ती चलाया जा रहा है कि सिस्टम कलैप्स हो चुका है तो आप सुबह बनाए। वैसे तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मान लो तो इस्लामाबाद को थरपारकर वालों को हवाला कर दें, हम उसको ठीक कर देंगे। वहां के बच्चे को टॉप हर एग्जाम में टॉप करवा देंगे। उनका हॉस्पिटल्स का हाल हमने अभी अभी देखा, उनका हॉस्पिटल्स को भी हम 100% मुफ्त करवा के आर्मी दुनिया का स्टैंडर्ड पे लेकर आएंगे। हमें सिर्फ इस्लामाबाद का जिम्मेदारी दे दें, वहां हम आपको दिखा देंगे कि थर थर के नौजवान, थर के सियासतदान क्या क्या कर सकते हैं। हमेशा की तरह अब ये रिवायत बन चुका है कि हमारे थर के बच्चे टॉप करते हैं। जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय उनके लिए तालियां बजाने के बजाय अपने नफरत की सियासत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत की सियासत दफन करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा।
0: सिस्टम जी नाकामीअ ते नवनि सूबनि वारो मंतक समुझ खां ॿाहिर आहे। इस्लामाबाद नाकाम थियो आहे त इस्लामाबाद खे थर वारनि हवाले कयो। थर जे तरक़ीअ ते समूरो मुल्क हैरान आहे। इस्लामकोट में थर कोल फेज़ 3 मनसूबे जो इफ़्तिताह कंदे पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ चयो आहे त कराचीअ में सियासी यतीमनि जी जमायत जी सियासत करे रही आहे। सियासत खे सिंध में आणण वारी कोशिश खे कामयाब थियण न ॾींदासीं। थर जे ॿारनि टॉप कनि था, तव्हां खे वाधायूं ॾियण बदिरां नफ़रत वारी सियासत कयो था। थर जी तरक़ी कुझु माण्हुनि खे हज़म न आहे थी रही। असां नफ़रत जी सियासत खे दफ़न करे छॾींदासीं। इस्लामाबाद जा मायर चवंदा हा त थर जो कोयलो बेकार आहे, सीड़पकारी कण बेकार आहे। हाणे पूरो पाकिस्तान हैरान आहे त थर किथे पहुची वियो आहे। इस्लामाबाद वारनि खे चवां थो त हू बि थर जहिड़ी तरक़ीअ ते ध्यानु ॾियनि। हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में थियल ॻाल्हियुनि जे नाकामीअ जो ज़िमेवार केर? हुकूमत ऐं अपोज़िशन जा हिक ॿिए ते इल्ज़ाम जारी। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरीअ चयो आहे त नथो लॻे त मुस्तक़बिल में ॿीहर ॻाल्हियूं थींदियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत केपीअ में एमरजेंसीअ वारे ऑप्शन ते गौर करे रही आहे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोअर चयो त हुकूमती होड सबबि ॻाल्हियूं नाकाम थियूं। पीटीआई केपी हुकूमत न छॾींदी ऐं नई असेंबली टोड़ींदी। लॉन्ग मार्च जारी आहे। सोहेल आफरीदी लीड करे रहियो आहे। रियासत ऐं केपीअ जो मसइलो सियासत न पर दहशतगर्दी आहे। रियासत जो फ़ैसिलो दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियूं न पर कार्रवाई आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त ॿिनि सालनि दौरान केपीअ में दहशतगर्दीअ जा 6000 खां वधीक वाकिया थिया आहिनि। 1200 शहादतियूं थियूं आहिनि। 37 हमलनि में अफ़गान शहरी मुलविस निकिता आहिनि। 14 आपघाती हमला थिया आहिनि, जिन में अक्सरत अफ़गान शहरनि जी आहे। सीटीडी केपीअ वटि रुगो 17 बख़्तरबंद गाॾियूं आहिनि। केपी हुकूमत ॿुधाए दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे लाइ वटनि कहिड़ी पॉलिसी आहे। दहशतगर्दीअ खे हिक साज़िश तहत मड़ियो वियो आहे। ग़लति पॉलिसियुनि सबबि मुल्क विरहाइजी रहियो आहे। लॉन्ग मार्च खे ख़िताब कंदे केपीअ जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदीअ चयो आहे त पंहिंजे अवाम सां गॾु बीहण बेवकूफ़ी आहे, त मां बेवकूफ़ आहियां। हुकमराननि वटि अञा बि वक़्तु आहे। अवाम ॿाहिरि निकितो त केर बि कंट्रोल न करे सघंदो। थर पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल तब्दील करे सघे थो। थर जो कोयलो पाकिस्तान जी तवानाई ऐं सनअती ज़रूरत लाइ अहम ज़रियो बणिजी रहियो आहे। इस्लामकोट में तक़रीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त IPPs दरामदी कोयले बदिरां थर जे मक़ामी कोयले ॾांहुं मुंतक़िल थी रहियूं आहिनि। सिंध हुकूमत फेज़ 3 मनसूबो 100% पंहिंजे ख़र्च ते मुकमल करे रही आहे। थर फेज़ 3 सां सालियानो अटकल $220 मिलियन वाधू नाणे जी बचति थींदी। निजकारी कमीशन गैपको जे निजकारीअ लाइ नव कंपनियुनि खे अहल करार ॾेई छॾियो। टी ट्रक ऐं छह कंपनियूं शामिल ज़रई तरक़ियाती बैंक ऐं SBFC जे निजकारी अमल जो बि तेज़ी करण जे हिदायत। इस्लामाबाद, कराची ऐं लाहौर हवाई अॾनि जे आउट सोर्सिंग ॻाल्हियुनि लाइ कमेटीअ जी नई सिर जोड़जक कई वई। हुकूमत पेट्रोल जी क़ीमत वधीक 88 पैसा वधाए छॾी। डीज़ल जी क़ीमत में 1.88 रुपया फी लीटर लात। हफ़्ते जी शुरूआत में पेट्रोल जी क़ीमत में इज़ाफ़ो ऐं डीज़ल जी क़ीमत में मामूली घटिताई कई वई। क़ीमतुनि में फेरफार बाद पेट्रोल जो फी लीटर 393.64 रुपया ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 397.76 रुपया फी लीटर मुक़रर कई वई। नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं इहे नयूं क़ीमतूं 6 अक्टूबर लाइ मुक़रर कयूं वयूं आहिनि।

हुकूमत खे पेट्रोल लेवी वापस वठणी पवंदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज नईम चयो आहे त पेट्रोलियम लेवीअ वारे मामले ते 7 अक्टूबर ते ईंदड़ मरहले जो ऐलान कयो वेंदो। हुकूमत खे पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करणी पवंदी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ़ शागिर्दनि जे एहतजाज जो नोटिस वरितो। सिंध हुकूमत जो वफ़द हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ़ शागिर्दनि जे एहतजाजी कैंप ते आमद। आजिज़ धामरा हैदराबाद जो मेयर काशिफ शोरो ऐं ॿियनि जूं शागिर्दनि सां ॻाल्हियूं। शागिर्दनि नतीजनि ते ख़दशनि खां पीपी अॻवाणनि खे आगाह कयो। पीपल्स पार्टी वफ़द शागिर्दनि जा ख़दशा वॾे वज़ीर ताईं पहुचाइण जी मुज़ाहिरनि खे ख़ातिरी कराई।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफ एम 91.6।
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream,
6: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
7: ਹੈ ਯਮਨ ਤੇ

0: दिफाई इतिहाद पारां सऊदी अरब के जरूरी फौजी कुवत ऐं सलाहियतूं फराहम कर जो फैसलो रियाज में एक दिफाई मुआदे जी स्ट्रेटजिक सियासी ऐं दिफाई कमेटी जो हंगामी इजलास नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर समेत सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे नुमाइंदनि जी शिरकत मके ऐं मदीने खे निशानो बणाइण जी कोशिश ऐं सऊदी शहरनि ते हमलनि जी सख़्त मर्द दिफ़ाई वाइदनि ते फौरी अमल कंदे सऊदी अरब खे फौरी ज़रूरी फ़ौजी कुवत फराहम कई वेंदी ऐं ख़तरे खे मुंहुं ॾियण लाइ दिफ़ाई कयूं वेंदियूं।
1: कुझु चीज़ पे हम बिना देखे बिना सोचे भरोसा करते हैं। वो भरोसा
0: जनरल जे पैनल तौर मुक़रर जी तौसीक़ पिण

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री

0: ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है। आई एम यूजिंग विटामिन सी एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hemé Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemé Diamond Glow Bleach Cream,
4: खूबसूरती है जो असल राज। सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अरे न, खुश्क ऐं बीरोनकी स्किन हर इन्हीं जे लाइ छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जे में आहिन चावरन जो खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे, ऐं चावरन जो खूबियों जिल्द मां फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे। सिर्फ टिन ईहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
6: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।
7: ओ पिता जा पिताई, पिता ते नूर मुझो तो।
6: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डूंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: डॉक्टर आसिम भी मौजूद हुआ. मके दिफाई इतिहाद पारां सऊदी अरब के जरूरी फौजी कुवत ऐं सलाहियतूं फराहम करण जो फैसलो. रियाज में मके दिफाई मुआहदे जी स्ट्रेटजिक सियासी ऐं दिफाई कमेटी जो हंगामी इजलास. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत सऊदी ऐं तुर्किया जे नुमाइंदनि जी शिरकत. मके ऐं मदीने खे निशानो बणाइण जी कोशिश ऐं सऊदी शहरनि ते हमलनि जी सख़्त मज़म्मत. इतमाही दिफ़ाई वाइदनि.
6: पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन नेटवर्क.
5: कुवत फराहम कई वेंदी ऐं खतरे खे मुंहुं ॾियण लाइ दिफ़ाई शयूं लॻायूं वेंदियूं. इजलास दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद जे मके दिफ़ाई इताद जे पहिरें सेक्रेटरी जनरल तौर मुक़ररी जी तौसीक पिण कई वई. सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन पंज खारिजी दहशतगर्द मारिजी विया. बस ज़ख़्मी. सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब उत्तर वज़ीरिस्तान में गुझी इतलाह ते फोर्सिस दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो. ऑपरेशन जे नतीजे में पंज खारिजी दहशतगर्दनि खे जहनुम बेड़ो कयो वियो. सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गौरव वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश. दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखण वारे अज़म जो वर्चाउ.

मकामी सीड़पकार मुल्क में सीड़पकारी कंदा तो परदेही सीड़प भी वधंदी। हुकूमत मुआशी तरक्की से गड बरामदात मेवात के तरजीह दे रही है। कराची में तकरीब के खिताब कंदे नाणे वाले वजीर मोहम्मद औरंगजेब है तो सीड़पकारी ए मुआशी तरक्की लाए हुकूमत ए निजी शोबे के गरजी कम करो पव। खैरपुर रियासत के गोणे वाली अली मुराद खान टालपुर जो मड़ कोट जी जे किले पहुंचाया वो जनाजे नमाज तैयारी मुकम्मिल वडे अंग में शहरी जनाजे गाह पोतल। लाड़काने शहर जे बाजीगर पुल वट राइस कैनाल में गुजरियल डी बुढ़ी वेलिंगर जो लाश अजा हथ न आयो। मुमताज कॉलोनी वासी में जी हसन खटियाण जी गोला जारी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर शेयरिंग टू जी वीडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज। मुझे कहते हैं आज रुखसार सिंह की आवाज अभी कैसे हैं आप? आई होप सो जी जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल टिप टिप सर कूल एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स। जो भी आप सुनते हैं डेली बेसिस पे, यानी कि मंडे टू मंडे से लेके हर एक दिन ठीक है जी, सो आप मुझे सुन सकते हैं। और इसके अलावा जी प्रोग्राम में हम सबसे पहले वक्त की बात करेंगे तो जी वक्त हुआ जाता है 11:17 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम तो लोग घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पर भी आप जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट अल दिनर, और अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बगल से खुदा खेल दीजिए मौजूद और तरफ के लिए खुदा खेल दीजिए मतलब
1: के आंखों में आंसू है दिलों में बसे बेबस।
0: वो तमाम तो लोग जो लोग सालग्रह उनको कहेंगे मैंने मेरे हाथ रजन से बदले हरी बजे चाहिए। उसके अलावा वो लोग जो के बीमार हैं उनको कहेंगे कैचुअल सॉन्ग। वो लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहे, आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और शहरों, शहरों, शहरों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मर गुजारों, घर और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परसारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे अहलन व सहलन मरहबा बखैर आगे जी आयु सब बिस्मिल्लाह बजार वेलकम टू जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट। सुपर वाइट जो कि आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा सुपर से भी ऊपर हैं, और सुपर वाइट वाले ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद और मौजू हैं। सुपर वाइट के तमाम प्रोडक्ट जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो बहुत बुरा करते हैं, अच्छा करेंगे और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। और सुपर वाइट के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं डे बाय डे, वो साथ साथ आपको बताऊंगी। और साथ साथ आप लोग सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर भी नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले वो तमाम तो लोग जो कि सखर और लालकाना से ताल्लुक रखते हैं वो इमरान साहब से वो रब्ता कर सकते हैं। इमरान साहब का नंबर है 03147754462। इसके अलावा हैदराबाद वालों के लिए नंबर है जी 03702568321, ठीक है, ये नंबर है, डायल कीजिए और जहां जहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है वहां वहां पे अवेलेबल करवाएं। हम मूव करें प्रोग्राम में एक गाने की तरफ और गाना सुनाएंगे, गाने के साथ हम वापस आएंगे और आगे चलेंगे, आपको बताएंगे हम क्या करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुजार है बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स।

भी प्रोग्राम है, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. इसी ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/GFM88NGLRKANAFM88.8, जिसके पेज पे आके आप लोगों को मिलती है लाइव ऑडियो स्ट्रीम. जिंदगी गुलजार होती है स्क्रीन से, आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी बातें कर सकते हैं. और सुपर वाइक के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स जो कि बहुत अमेजिंग किस्म के प्रोडक्ट्स हैं. फेस वॉशेस की बहुत अच्छी रेंज आती है, ब्यूटी क्रीम्स की बहुत अच्छी रेंज आती है, और आपकी खूबसूरती जिसको लगाती है चार से बहुत ज्यादा चांद. ठीक है जी, तो सुपर वाइक के तमाम प्रोडक्ट जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, इनमें इनकी वाइटामिन सी क्रीम आती है. वाइटामिन सी क्रीम के साथ साथ स्ट्रॉबेरी क्रीम आती है, टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइक की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम भी आती है, सुपर वाइट की एंटी फ्रेकल क्रीम आती है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री एंटी एक्नी क्रीम आती है. इसके अलावा सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम आती है. ठीक है, तो सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम और साथ में इनके बूस्टर्स तो बहुत ही कमाल के हैं. और बूस्टर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप इनसे फार्मूलाज बना सकते हैं और कैसे आप इनका इस्तेमाल बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे. लेकिन हम चलेंगे आगे, एक और गाना प्ले करेंगे. गाने के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब. वापस आएंगे, वापस आके प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइड अक्सा कॉस्मेटिक्स.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न खुश्क और बीरोनों की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर पीओ किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन एंड रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सुंदर जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सुंदर जो आवाज बुधंदा रहो।

आप लोगों की स्किन के लिए बनाई गई है, जिन लोगों की स्किन डैमेज हो चुकी है और उनकी फेस पे हो चुकी है पिगमेंटेशन या फिर टैनिंग, तो पिगमेंटेशन और टैनिंग को खत्म करने के लिए विटामिन सी की क्रीम यूज करेंगे सुपर वाइट वालों की, जिसमें आपको 7 खूबियां मिल जाएंगी और इससे भी कई ज्यादा, ठीक है। और वो खूबियां क्या है, वो खूबियां ये है कि ये क्रीम जो है एंटी एजिंग है, ठीक है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करती है।

0: जी
1: ओके ये गाना किसका है?
0: ये गाना है मुनव्वर मुमताज मौलाई का, हमारे दोस्त है उनको शामिल करना चाहता हूँ।
1: कीजिए।
0: कैमी ढिल्लू साहब, सावर ढिल्लू साहब और सरदार साहिबा जो हमारा प्रोग्राम सुनती है लेकिन हमको सलाम नहीं देती, उनको भी सलाम देना चाहता हूँ और मुस्कान साहिबा और जो भी सुन रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: ओके जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।

अगले साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि गाना प्ले कर लेते हैं और गाने के साथ फिर कॉल्स को लेते हैं, आप लोगों की कॉल्स और मैसेजेस और साथ में कमेंट्स भी. ठीक है, तो गाना हम प्ले करने जा रहे हैं और ये वाला गाना बल्कि ये वाला नहीं, मैंने कुछ और प्ले करना था, जब मैं कुछ और सर्च करती तो मुझे कुछ और मिल जाता है. खैर कोई बात नहीं, हम प्ले करेंगे एक और खूबसूरत सॉन्ग. सो इसको हम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं सुपर वाई के प्रोडक्ट के साथ. और सुपर वाई के प्रोडक्ट जिन लोगों ने ले लिए हैं तो वो डेफिनेटली अपनी ब्यूटी को जो है एंजॉय कर रहे होंगे. और अगर अभी तक आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो बहुत देर कर रहे हैं, देर नहीं करनी और आगे लेके आना है सुच को. गाना सुनेंगे साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले गाना.

वो सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ आपको बताते जाते हैं जी सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर जो कि आप लोगों ने डायल करना है। सखर और लाड़काना वाले नोट डाउन कर लीजिए, सखर और लाड़काना वाले डायल कर सकते हैं 03-14-77-5-44-62। ठीक है, दोबारा से रिपीट करूंगी 03-14-77-5-44-62। इसको डायल कर सकते हैं, जहां जहां पे अवेलेबल नहीं है वहां वहां पे अवेलेबल करवाएंगे सखर और लाड़काना में। ठीक है, इसके अलावा हैदराबाद वालों के लिए जो नंबर है वही जी मुमताज हसन खान साहब का, जो कि डायल कर सकते हैं आप लोग 03-70-25-68-321। ठीक है, इसको डायल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी उनकी दूसरी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जी, जिसमें पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, और खास तौर पर सर्दियों के मौसम में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है, जहां हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही होती है वहां पे हमारे नेल्स भी ड्राई हो रहे होते हैं, हमारी जो है हील्स जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और फटने लगती है। तो फटी हुई एड़ियों के लिए और खास तौर पे ड्राई लिप्स के लिए, ड्राई नेल्स के लिए पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जाता है, और जब पेट्रोलियम जेली ही सुपर वाइट की हो तो बहुत कमाल की चीज हो जाती है। और वो कमाल की चीज एक तो ये होती है कि बहुत अच्छी पैकेजिंग में, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, और मजे की बात कि इसके अंदर फ्लेवर्स बहुत सारे आते हैं। ठीक है, आप अपना फेवरेट फ्लेवर यूज कर सकते हैं जी, लेमन का फ्लेवर आता है, पिंक फ्लेवर आता है, कोकाओ बटर फ्लेवर आता है इसमें। ठीक है, बहुत सारे फ्लेवर इसमें आपको मिल जाते हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत सी पैकेजिंग जिसको देख के आपका दिल खुश हो ही जाता है। और इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए इस सर्दियों के सीजन में, और जब इन सर्दियों के सीजन में आपको ये जो है अच्छे अच्छे अलग अलग वेरिएंट्स इस्तेमाल करने को मिलेंगे पेट्रोलियम जेली के अंदर, तो और भी ज्यादा कमाल हो जाएगा। अच्छा, पेट्रोलियम जेली से आप डिफरेंट चीजें भी बना सकते हैं, और वो जो डिफरेंट चीजें हैं जो आप बना सकते हैं वो लाइक आप इससे जो है अपनी लिपाम बना सकते हैं, कोई भी आप उसमें लिपस्टिक का शेड ऐड करें और फिर उसमें आप जो है लिप बाम मतलब कि पेट्रोलियम जेली ऐड कर दें, और उसकी जो है क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखनी है पेट्रोलियम जेली की, और जो आप की जो लिपस्टिक है उसकी थोड़ी सी कम रखनी है, और आपका पिंकिश या रेडिश जो लिप बाम है वो तैयार हो जाएगा। आप उसको स्टोर करके डेली बेसिस पे एज अ टेंट, एज अ लिप बाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा आप इससे हैंड एंड फीट क्रीम भी जो है बना के यूज कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे सुपर वाइट की कोई भी एक ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है। ठीक है, सुपर वाइट की कोई भी एक ब्यूटी क्रीम लेके सेम उसकी क्वांटिटी के बराबर यानी कि उसकी हम वजन पेट्रोलियम जेली लेंगे सुपर वाइट वालों की, कोई भी अपना फेवरेट फ्लेवर। ठीक है, उसको लेने के बाद दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद तैयार है आपकी हैंड एंड फीट की क्रीम, जो कि आप रात को सोने से पहले अपने हाथ और पांव पे अप्लाई करके सो सकते हैं, और कुछ ही दिन में अपने हाथ पांव को चिट्टा गोरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके रिजल्ट्स होंगे, और जिन लोगों के हाथ और पांव के डार्क नकल्स हो जाते हैं या टैनिंग आ जाती है, ये सब कुछ खत्म होगा, और आपकी जो हैंड्स एंड फीट्स हैं वो आपके फेस की तरह जो है चमक रहे होंगे। तो ये इसकी खास बात है। इसके अलावा जी सुपर वाइट की पेट्रोलियम जेली को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और चाहें तो इस फॉर्मूले के अंदर आप ब्यूटी सीरम बूस्टर भी ऐड कर सकते हैं सुपर वाइट वालों का। शायद आपको जो रिजल्ट्स हैं वो डबल से ट्रिपल मिलेंगे, और ट्रिपल से भी कई ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स का, जो कि आप लोगों ने पूरा पूरा उठा लेना है, और मार्केट जाएं आज ही बाय करें जहां पे अवेलेबल नहीं है। हेल्पलाइन नंबर उन लोगों के लिए मैं बता चुकी हूं, सो हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग डायल करके अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में इन प्रोडक्ट्स को इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं। तो जी इसी के साथ हम चलेंगे आगे, और क्या करेंगे हम।

0: Express PM. This time check is blocked.
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6
0: Express PM. This time check is blocked.

रबे जी मुंद लाइ सूबनि में पाणी विर्छ बाबति इरसा जी सलाहकारी कमेटीअ जो इजलास। पाणी जे विर्छ बाबति अहम फैसलनि जो इम्कान। इरसा जी सलाहकारी कमेटीअ जो इजलास चेयरमैन अमजद सेठ जी सदारत हेठि जारी। रबे जी मुंद दौरान चइनि सूबनि में पाणी जे विर्छ बाबति अहम फैसला कया वेंदा ऐं सूबनि में पाणी प्लान विरिहायो वेंदो।

0: सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके जे इलाइक़े के उत्तर वजीरस्तान में ऑपरेशन में पंज खारजी दहशतगर्द मारिजी विया ॿ ज़ख़्मी सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि उत्तर वजीरस्तान में ॻुझी इतलाउ ते फोर्सिस दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो ऑपरेशन जे नतीजे में पंज खारजी दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखण वारे अजम जो प्रजाउ मकामी सीड़पकार मुल्क में सीड़पकारी कंदा त परडे॒ही सीड़प बि वधंदी हुकूमत मुआशी तरक़ीअ सां गॾु बरामदाद में वाद खे तरजीह ॾेई रही आहे कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त सीड़पकारी ऐं मुआशी तरक़ीअ लाइ हुकूमत ऐं निजी शोबे खे गॾिजी कम करणो पवंदो गडि॒यल क़ौमनि जे सिंगथोनी गोत्रनि सदर ऐं वज़ीर आज़म सां मुलाक़ातूं कंदो वफ़ाक़ी वज़ीर राणा तनवीर हुसैन ऐं राणा सनाउल्ला जी सदारत हेठि कणक कमेटीअ जो पहिरियों इजलास हारियुनि खे मुआशी तौर मज़बूत करणु ज़रिए पैदावार वधाइण लाइ हदफ़ी सब्सिडी अंटर करार राणा तनवीर चयो आहे त हारियुनि खे संदन महिनत जो मुनासिब मुआवज़ो ॾियण लाइ मुनासिब इमदादी अघु ज़रूरी आहे ज़रूरतूं पूरियूं करण ऐं ग़िज़ाई तहफ़ुज़ यकीनी बणाइण लाइ कणक जी घणी पैदावार तरजीह आहे कणक जो अघु मुक़ररु करण ते वफ़ाक ऐं सूबनि विच में क़ौमी इतफ़ाक़ राय ज़रूरी आहे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी

0: क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
3: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
2: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
6: GFM 91.6।

Arvish, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स, फाई अक्सा कॉस्मेटिक्स. और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक कर रहे हैं. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीकाकार से. सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर. इसके साथ साथ आप लोग कॉल करेंगे 0300-111-3488. और सुपर मार्केट प्रोडक्ट्स साथ साथ. अच्छा, आप इनसे फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है. ठीक है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम लेने के बाद आप लोगों ने लेना है सुपर वाइट सीरम ब्यूटी बूस्टर. ठीक है जी, ये आप लोगों ने लेना है. और सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर जो कि आप लोग लेंगे, और सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम लेंगे साथ में. ठीक है, ये तीन चीजें लेंगे. क्या लेंगे? सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट ऑयल फ्री एंटी एक्ने ब्यूटी क्रीम जो कि ट्यूब की फॉर्म में आपको मिलेगी. ठीक है, और साथ में सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर. ये तीन चीजें लेके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आप लोग जार में. ठीक है, मेक श्योर आपका जार जो है वो ग्लास या फिर प्लास्टिक का होना चाहिए. उसमें अच्छे तरीके से मिक्स करें. मिक्स करने के बाद ना इसको स्टोर कर लें. स्टोर करने के बाद इसको रात को रोज सोने से पहले अप्लाई करें. ठीक है, रोज रात को सोने से पहले अप्लाई करेंगे, और रोज रात को सोने से पहले अप्लाई करके सो जाएंगे. मेक श्योर कि उससे पहले आप फेस को वॉश करें. फेस को कैसे वॉश करेंगे? सुपर वाइट के फेस वॉश, सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश, या फिर जो आपका फेवरेट हो फेस वॉशेस की रेंज में से वो आप लोग ले सकते हैं. ठीक है, और वो लेने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि फेस को वॉश करना है अच्छे तरीके से. फेस को वॉश करने के बाद अपने फेस के ऊपर ये फार्मूला लगाना है. पहले ही तीन दिन में वाजे विजिबल रिजल्ट देखेंगे. वो तमाम थे लोग जिनकी एक्नी वाली स्किन है, या फिर एक्नी बहुत सारी हो जाती है. एक्नी चाहे किसी भी तरह की हो, लाइक पस वाली एक्नी हो, या फिर पस वाली एक्नी के साथ साथ जो छोटे छोटे से पिंपल्स हो जाते हैं वो वाले पिंपल्स हो, या फिर कोई और एक्नी हो जिसके निशानात वो छोड़ जाती है, वो निशान सालों तक नहीं जा रहे होते, वो वाली एक्नी हो तब भी खत्म हो जाएगी. ठीक है, और ये फार्मूला स्पेशली उन तमाम तो लोगों के लिए है जिनकी स्किन टाइप ऑयली है. तो ऑयली स्किन टाइप वाले लोग जो है इस फार्मूले को इजीली अच्छे तरीके से लगा सकते हैं. इसकी आपको बहुत ज्यादा अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं.

0: Okay, caller lete hain jo line pe caller honge next. Hello.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Waalaikum assalam, kaun kahan se?
1: कैसे आप? ठीक है, तबीयत सेहत कैसे आपकी?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. फारूक भाई बात कर रहे हैं?
1: जी जी बिल्कुल.
0: फारूक भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं,
1: करम है अल्लाह पाक का. सबसे पहले तो आई एम सॉरी दिल से माफ, क्योंकि इस बार मैं आपको बर्थडे विश नहीं कर पाया, लेकिन मेरा भी कसूर नहीं है. मुझे आप कहीं नजर ही नहीं आई.
0: मुझे हाँ, मैं बिल्कुल कहीं पे नजर नहीं आई आपको, और वाकई ऐसा है. खैर कोई बात नहीं फारूक भाई, और मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी मैंने अभी सुना तो पता चल गया कि आपको अलहमदुल्ला कोई स्पॉन्सर शो मिला है. मुझे तो पता ही नहीं आप कब से कर रही हैं.
0: बिल्कुल जी, इसको कोई एक हफ्ता होने वाला है जी. फ्रॉम 1 अक्टूबर से हम इसको कंटिन्यू किए हुए हैं. खैर फारूक भाई, मुझे बताइएगा कि सुपर वाई के प्रोडक्ट यूज करने का इरादा है?
1: चलो आप बोल रही हैं तो विल बी बेस्ट.
0: चलिए ठीक है जी, और कुछ कहेंगे फारूक भाई?
1: बस सभी सुनने वालों को सलाम दो. सॉरी मैं दिल से माजर करता हूँ.
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन. थैंक यू सो मच फारूक भाई, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें.
1: ओके, आप भी अपना ख्याल रखिएगा.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.

0: congratulations.
1: Hey, call caller, hello.
2: Assalamualaikum बहन जी.
1: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: बहन को बात कर रहा हूँ, रंगपुर से.
1: कहाँ से?
2: रंगपुर.
1: रानीपुर से. कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
2: बहन जी उबाड़े से. उबाड़े से.
1: अच्छा ठीक है, उबाड़े से बात कर रहे हैं. कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बहन जी, बहुत तबीयत सही है मेरी. नहीं है.
1: अच्छा ओके, अल्लाह ताला आपको जल्दी से सेहतियाबी दे, आमीन. प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: आवाज सही नहीं आ रहा है.
1: आवाज सही नहीं आ रही मेरी. चले आवाज को क्लियर करेंगे और मुझे बताएं कि जी जी
2: बहन जी.
1: जी जी बोलिए. ओके कॉल ड्रॉप हो गई है. बहुत सारी लाइव कॉल्स आप लोगों के एंटरटेन करेंगे. 3000 3000 3000 मेरे पास होगा. एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक और दोनों के बाद वापस आएंगे, यानी कि गाना और कमर्शियल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइड प्रोडक्ट.
3: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by Agar Khubsu. It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
4: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
5: Khoobsurti ka asal raaz sirf D-Skin Beauty Cream. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
6: अरे न खुश्क बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिन चावरन जो खूबियो ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चावरन जो खूबियो जिल्द मां फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन सां गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे के मिले वधीक खूबसूरती हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
7: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
8: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
7: सिंध जो आवाज बुधंदा.

रखे हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंकी आवाज।

0: आगे जी ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय राहत फतेह अली खान और इसके साथ साथ हम चल रहे हैं आगे और कॉल्स आप लोगों के लेंगे. बहुत सख्त मुकाबला है जी वक्त का. 03000113488 बहुत सारी लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे और कॉल्स आज पता नहीं क्यों एक के बाद एक ड्रॉप होती जा रही है. खैर इसके साथ साथ सुपर वाई के प्रोडक्ट स्मार्ट किशोर का कॉमेंट आया है. वालेकुम असलाम सरदर्द खुश रहो. अच्छा सरदर्द खुश रहे और हमारा क्या हम खुश ना रहे फिर कोई बात और इसके अलावा स्मार्ट किशोर ने हमें छत वाली बात का जवाब नहीं दिया कि मैडम ज्यादा सख्ती कर रही है आपके साथ. अच्छा इसके अलावा जी और भी बहुत सारे कमेंट हैं. अब्बासी के साथ ये आईडी का नाम है और इससे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता ये कोई पाकिस्तान से है, ये कोई है जी फॉरेन कंट्री और वहां से कोई कमेंट आ रहे हैं अंग्रेजी में. मुझे तो आती नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूंगी. अच्छा इसके अलावा जी कहाँ गए कमेंट कहाँ गए कमेंट कमेंट की तरफ आएंगे लेकिन एक कॉल लेंगे. सो नेक्स्ट कॉलर. हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन
1: आपके साथ लाड़कों से आपका शौक
0: कैसे ही ठीक ठाक
1: परवाई मैं ठीक हूँ. आप सुनाए आप कैसे हो.
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और मुझे बताएं कि सुपर वाई के प्रोडक्ट कौन से यूज कर रहे हैं.
1: यूज नहीं कर रहे इंशाल्लाह जाते रहे.
0: चलिए जरूर लें. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखें.

वो आपके कॉम्प्लेक्शन को जल्दी जल्दी से ब्राइटन अप करेंगे और स्किन जो है ना शादी में बड़ी खूबसूरत लगेगी. तो वो लोग जिन लोगों की शादी होने वाली है, चाहे मर्द हजरात हैं या खवातीन, खास तौर पे खवातीन, ठीक है, तो वो यूज करेंगे सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम. अगर आप एक अच्छी सी ब्यूटी क्रीम ढूंढ रही हैं तो जरूर शादी से पहले टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करें. इसके जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छे हैं. और सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर इसमें ऐड कर लें, डबल हो जाएंगे रिजल्ट्स. और इसके साथ सुपर वाइट का टर्मरिक फेस वॉश यूज करना ना भूलें. रात को सोने से पहले फेस को वॉश करें, वॉश करने के बाद ना इसको अप्लाई करें. और अगर इसमें बूस्टर ऐड कर लेंगे तो सोने पे सुहागा. और फिर इसको अप्लाई करें रात को सोने से पहले, आप इसके विजिबल रिजल्ट्स देख पाएंगे पहले ही 3 दिन में. और जहां जहां पे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे वहां वहां पे सखर और लालकाना में अवेलेबल करवाने के लिए 03147754 6. इसके अलावा हैदराबाद वालों के लिए 03702568321 ये हेल्पलाइन नंबर पर डायल करें और अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में अवेलेबल करवाएं. और इसी के साथ हम लास्ट में अच्छा सा गाना प्ले करेंगे. एंड अच्छा सा गाना इज वेरी ब्यूटिफुल, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है. इसको प्ले करेंगे द सॉन्ग कॉल्ड छलड़े छलड़े वाल. सो फाइनली इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

हुकूमत ऐं पीटीआई में जारी छिकताण घटि न थी। घरू मामलनि बाबति मुल्कती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त ॻाल्हियूं रुगो केपीके में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे बाबति थियूं हुयूं। ॻाल्हियुनि में बुनियादी नुक़्तनि ते बि इतफ़ाक़ थी वियो हो। पाकिस्तान मां दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो करणो पवंदो। असां पाकिस्तान जी सलामती ऐं तहफ़ुज़ जी जंग विड़ी रहिया आहियूं। केपीके जो वॾो वज़ीर वज़ारत बचाइण जी कोशिश करे रहियो आहे। हुननि ते पार्टी अंदर बि तनक़ीद थींदी आहे। पीडीआई जो लॉन्ग मार्च अटक वारे पुल पार करे न सघंदो। सदर ऐं वज़ीर आज़म फ़ैसिलो कयो त केपीके ऐं गवर्नर राज लागू थी वेंदो। केपीके जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त हुननि वटि 20 लख माण्हू गॾु करण जी सलाहियत ई नाहे। सोहेल आफ़रीदीअ जो सूबे ते कंट्रोल नाहे, मुराद सैद जे चवण ते हलंदो आहे। यमन में सऊदी इतिहादी फ़ौज ऐं हुसी बाग़नि में चकरियूं जारी। हुसैन पारां सऊदी अरब में तेल कंपनी अरामको खे निशानो बणाइण जी दावा। यमनी सरकारी फोर्सिस मूजिब हुसैन इमदादी सामान खणी वेंदड़ ट्रक ते हमिलो कयो आहे, जंहिं जे नतीजे में हिकु ॼणो शहीद थियो आहे। हुसैन सऊदी अरब में टिनि हंधनि ते हमलनि जी दावा कई आहे।

0: रबी जी मुंद लाइ सूबनि में पाणी विर्छ बाबति इरसाजी सलाहकारी कमेटीअ जो इजलास। पाणी जे विर्छ बाबति अहम फैसलनि जो इम्कान। इरसाजी सलाहकारी कमेटीअ जो इजलास चेयरमैन अमजद सैद जी सदारत हेठि जारी। रबी जी मुंद दौरान चइनी सूबनि में पाणी जी विर्छ बाबति अहम फैसला कया वेंदा ऐं सूबनि में पाणी प्लान विरिहायो वेंदो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान में ॻुझी इतलाउ ते फोर्सिस दहशतगर्दनि जे ठाकनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन जे नतीजे में पंज ख़ारजी दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ गरू, वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: Finally, अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: खुशखबरी। हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके सां कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतिराई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया।

0: क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल है। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक के सामू नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात के लिए राब्तो करियो 0306244770।
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अर्जुन ब्यूटी क्रीम जिनमें आए चार इंच खूबियों एक कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे इनर्जी नमी के लॉक करे एक चामड़न जो खूबी जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर एंड रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रीटमेंट में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरु गुड सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जिनकी हर कतरे सा
1: एक आजमायल कोरस जेको जोड़न

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अरे न, खुश्क ऐं बेरोनक स्किन, हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट। पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
0: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।
5: ओ पिता जा पिताई, पिता ते वसे नूर मुझो तो।
0: सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

चलिए वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88.8 पर। तुम्हारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी खूबसूरती में इजाफा लाते जा रहे हैं। बिल्कुल जी इस्तेमाल कर रहे हैं और उन तमाम लोगों से जानिए जिन लोगों ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लिया है। और अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो कि आप जान लीजिए पहले, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को बताएंगे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जनाब आपकी खूबसूरती के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश ये दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप जाते हैं तो आपको आराम से ये दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको जो है ना कौन से करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। अगर आपको इस चीज का नहीं पता कि भाई हमें कहाँ से परचेज करना पड़ेगा या फिर कहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं ये प्रोडक्ट, अगर आप नहीं जानते तो उसके लिए ये है कि आपको जो नंबर बताया जा रहा है ना प्रोग्राम के अंदर, उस नंबर के ऊपर बस आप रब्ता करेंगे और रब्ता करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा

दिया जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश आप क्यों इस्तेमाल करेंगे ये बताते हैं आपको। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात जो है वो ये है कि जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूला जो होता है ना उसे इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ये हमें डर नहीं होता कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है तो हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप मर्द हजरात हैं, आप खवातीन हैं, आप सब लोग दिल खोल कर और बेफिक्र होकर लगा सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना इसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें एड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जो है ना इन तमाम चीजों की वजह से 2-in-1 फार्मूला कहा जाता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना ये जनाब वो चीजें हैं जो कि फेशियल के अंदर एड की जाती हैं। यानी कि आप जो महंगे महंगे फेशियल्स कराना चाहते हैं ना कि भाई काश हमारे पास इतने ज्यादा पैसे आ जाए कि हम महंगा सा फेशियल करा सके, या फिर अगर आपके पास पैसे लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो ये दोनों सूरतें जो है ना ऐसी है कि भाई इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपका भी ये दिल चाहता है कि भाई हम फेशियल कहाँ से कराएं या फिर आपके पास जो है वो टाइम नहीं है, तो आप घर बैठे अपनी स्किन केयर कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज से। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप यूज करते हैं ना तो ये 2-in-1 फार्मूला है। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फेशियल वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात है कि जनाब आप लोगों को मुनासिब सी कीमतों के अंदर मिल रहा है ये प्रोडक्ट, तो आप चाहे मर्द हजरात हैं, आप चाहे खवातीन हैं, आप सब लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेडिकेटेड फार्मूला ये तो आप जानते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप यूज करेंगे ना तो आप लोगों को पता ही है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छा वाला रिजल्ट दे रहे हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं, वैसे खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ अपने जिल्द की मुनासिब केयर जो होती है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन को एक खूबसूरत इजाफा देना चाहते हैं तो भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर रूटीन को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। आपके जिल्द को नरम और मॉइस्चराइज रखने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जनाब आपकी स्किन केयर पर तवज्जो देना जरूरी हो चुका है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि केयर करना स्किन की क्यों जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब आप स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं तो आपके चेहरे पर ये जो मोटे मोटे दाने निकल आते हैं, दानों के निशानात आपके चेहरे पर आ जाते हैं। और कई मरतबा तो ये वाला सीन भी हो जाता है कि आपके चेहरे पर रिंकल्स बहुत पहले आ चुके होते हैं, क्योंकि आपकी उम्र अभी तक इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन आपके चेहरे पर रिंकल्स आ चुके हैं। तो अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स हो, क्रिकल्स हो, फ्रिकल्स हो, ये तमाम चीजें भी अगर मौजूद है तो वो भी खत्म हो सकती है जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं। अगर आपके घरों में हाँ शादियां हो रही हैं या आपकी खुद की शादी हो रही है तो आपके लिए तो ये है कि भाई पहली फुर्सत में जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर लाइए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे और खास करके आपकी शादी हो रही है तब भाई इतना जबरदस्त सा ग्लो, इतना जबरदस्त सा निखार आपके चेहरे पर लाएगी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद लोग आपसे पूछेंगे कि बताएं तो जरा क्या इस्तेमाल किया है, कि आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। और ये कमाल सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का है जनाब। खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए आप रोजमर्रा अपनी ब्यूटी केयर रूटीन में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को शामिल कर लीजिए। बस इतना काफी होता है, जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तब आपकी जिंदगी जो है ना वो निखर जाती है और आपकी स्किन जो वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के क्या तरीके कार हैं ये बिल्कुल आप लोगों को समझाएंगे। और जो आप लोगों को ये बताती हूँ ना कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है ना इसके अंदर वो चीजें एड की गई है कि आप पूरे पाकिस्तान में अगर रिसर्च करते हैं तो 2 से 3 प्रोडक्ट के अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स पाए जा रहे हैं। तो उन दोनों 2-3 प्रोडक्ट्स में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि भाई अमीरन वाली फील अच्छी थी। तो अगर आप भी अमीरों वाला फील लेना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज लाजमी करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती पे 4 चांद लगा देगा, तो आप भी लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब तक परचेज करो तो साथ तांगे डी स्किन जो फेस वॉश भी परचेज करो आए। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताते चले कि डी स्किन का जो फेस वॉश है ये आपकी स्किन के ऊपर किस तरह से काम करता है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि हम अपने चेहरे का ख्याल तो रख रहे होते हैं लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि भाई हमारे चेहरे पर कौन सा सोप सही रहेगा, कौन सा फेस वॉश सही रहेगा, या फिर ऐसा वाला सीन है कि हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास कोई फेस वॉश होना चाहिए, अच्छा सा फेस वॉश जो कि पोर्टेबल होता है। जाहिर सी बात है आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप उसे बस कैरी करते हैं और ले जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए जो
अफोर्डेबल भी होना चाहिए और आपकी स्किन के ऊपर सूट भी करे, तो आपके लिए डी स्किन फेस वॉश मौजूद है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार है जनाब। तो आप मर्द हजरात खवातीन सभी ट्राई कर सकते हैं। और डी स्किन फेस वॉश जो है ना, इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है। और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम है ना, इसका जो एड होता है वो आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपके चेहरे को हाइड्रेट रखता है और आपकी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखता है। यानी कि अब तो खैर से सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में ऐसा होता है कि हमारी स्किन जो ना काफी रूखी सूखी सी हो जाती है। जब हम फेस वॉश करके आते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर जो ना बहुत सारी खुश्कियां जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि भैया कौन सा अलग से मॉइस्चराइजर परचेज करना चाहिए, या फिर मॉइस्चराइजर अच्छे मिलना भी बहुत एक अच्छी सी बात होती है, ये मिल ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप तरह तरह के प्रोडक्ट से बचना चाहते हैं, दो तीन प्रोडक्ट्स बस अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए, जिसमें आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। जैसे ही आप लगाते रहेंगे, आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी, हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी और आप हमेशा खूबसूरत हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट को यूज करते रहें तो भैया आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, आप प्रोडक्ट को यूज करना छोड़ देंगे तो आपके जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं ना, वो भी आपसे कहीं रूठ जाएंगे। तो ऐसा इस मर्तबा कोई सीन नहीं होने वाला है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर आपने जो प्रोडक्ट्स लगाने के बाद जो रिजल्ट्स आपने हासिल कर लिए हैं ना, वो हमेशा आके साथ ही रहने वाले हैं। तो जनाब लाजमी ट्राई करके देखिएगा और सर अपनी खूबसूरती को पहचानिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कीजिए। और लगाने के क्या तरीकेकार है वो बिल्कुल आप लोगों को बताते हैं, लेकिन साथ साथ आप क्या करेंगे, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल कराएंगे। और साथ साथ डायल करते रहिए 03-12-50-25-907। बुरी टेसो बारह पंजाब पंजवी है 970। आई योर नंबर आहे 03-27-38-43-09। बुरी 332 है 73-84-309। मुख्य तो हाँ लगना था ये नंबर समोसा गड़ो गड़ तमाम भी याद थी वह हूँ ही न सो नंबर से तमाम भी रातों कयो आई पाजी करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराईंदा रहो। अच्छा हाँ मामा खास सवाल सा पूछा जी प्रोग्राम में, सवाल बिल्कुल बुधाईना सी पर जेके सोना मानो सा के बुधन पया सबने के चोंता भली करी आ यार तमाम जो मोहब्बतू आइन बाबा तमाम प्रोग्राम में शामिल आयो। आई सवाल पूछो आई वो केड़ो कलर आ जेको सा खाईंदा आयो, हां जी वो कौन सा रंग है जो हम खाते हैं। यस आपने रंग पहने तो हैं लेकिन एक रंग ऐसा है जो आप खाते भी हैं, तो मुझे जल्दी से बताइए और शामिल प्रोग्राम हो जाइए 881 पर और फेसबुक पर। बिल्कुल जी आपके फेसबुक पर मुझे कमेंट्स मिलते जा रहे हैं तो कमेंट्स की जानिब आते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मेरे पास एक खूबसूरत सा गाना मौजूद है खूबसूरत से लिसनर्स को डेडिकेट करने के लिए। तो चलिए जरा हम पहले ये थोड़ा सा गाना एंजॉय कर लेते हैं और आप पोस्ट को लाइक और शेयर करना जारी रखिए। हां जी

0: क्या बात है, ये गाना पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट है। मतलब अच्छा लगता है। ऐसे के साथ साथ आप पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, मुझे बताएं कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से सुन रहे हैं। दीस इन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया नहीं बताएं तो। ओके जी, हमारे साथ ही हमारी प्यारी निदड़ी कहती है कि दिल जर्फ और चाय का कप हमेशा बड़ा होना चाहिए। अल्लाह जी। हजार खान भाई कहते कि शो वीआईपी आपकी तरह, थैंक यू वेरी मच प्यारा भाई। अच्छा अलीशा लिखती है कि
1: Let me talk to you for a second, baby girl. Give me some of that girl. Kangana Lahore da te Italy da bad girl. Kar diya copy tenu sare.
0: अच्छा अलीशा ने लिखा है कि तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, तुम्हारे संग रातों में जाकर देखूं तुम्हें, बस सोना नहीं है मुझे। और लिखते हैं कि उसको हक है वो मुझे प्यार करे या ना करे। अली नजो बाबा अड़ा हक नजो मानुन के आईओ आ तो तुम्हारी डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो इस्तेमाल करना रहो। और इकबाल आशारी हमें सुन रहे हैं जी, बोलिए जो सोनू खान आशारी से टॉपिक बाजी। ओके और मुन्नवर अली हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा से दो, हाउ आर यू, आई एम गुड चाचा, आप बताएं कैसे हैं। रमजान भाई कहते हैं कि सलाम बहन आप कैसी हो, लिंक आपको शेयर करती है जी। वो गाना क्या मतलब प्ले करना है, ये तो आपने टिकटॉक का कोई छोटा सा वीडियो शेयर कर दिया है तो ये तो नहीं हो सकता शामले प्रोग्राम। और यार परदेसी भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून। तारिक भाई कहते हैं कि सज्जाद अली रुस्तमानी है, अच्छे कस्टमर है, इनका सॉन्ग चल लाएं। ओके जी बिल्कुल भाई, आपके लिए सज्जाद अली रुस्तमानी के लिए बिल्कुल गाना लगा देंगे। और आप हमारे साथ मौजूद है तारिक भाई, आपको वेलकम हो गया। रमजान भाई कहते हैं बहन जी जी माशाल्लाह, रमजान भाई बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और चाचा कहते हैं कि झंडो मरीवारा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वच्ची काडे हल्या वया, अल्लाह काडे हल्या वया एंड बाबा वाके चौथा। ये भाई पता कराना पड़ेगा हमें, हम देखते हैं जरा। और हमारे साथ ही ये गुड आफ्टरनून, हेलो सिद्रा जी, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, हेलो वेलकम हो गया जी आपका भी। दर्दी दिल हमारे साथ है कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून माय मोस्ट फेवरेट आरजे चंदा जानी, कैसी हो, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहते हैं स्वीट आर।

क्या बात है जी, हाय नहीं मेरा कंगना कंगना और मकड़ा मकड़ा याद आ गया। चलिए आप ऐसा कीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। और जो नंबर्स आपको बता रही हूँ उनके ऊपर राबता करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि मेडिकेटेड फार्मूलो आहे बाबा, तव्हां सभु लॻाए सघो था, चाहे तव्हां जी स्किन सेंसिटिव आहे, ड्राई आहे, ऑयली आहे, नॉर्मल आहे या वरी कॉम्बिनेशन टाइप आहे, हर स्किन जे मथां तव्हां ट्राई करे सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम। छो त नालो ई काफ़ी आहे सोना बाबू। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे दॿे जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो अथव, इहा ॻाल्हि बि यादि रखिजो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न, अगरि तव्हां परचेज करण वञो था त दुकानदार खे ज़रा इहो चओ त बाबा असां ख़बर आहे त असां कहिड़ो प्रोडक्ट वठण आया आहियूं। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आहे तव्हां नालो वठी करे तलब कयो, ऐं इहो ॾिसी करे तलब कयो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे दॿे जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे। जेके माण्हू वीचारा पढ़ियल न आहिनि, जिन खे न हूंदी आहे ख़बर त बाबा नालो छा आहे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा निशानी जेका यादि करे तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे वठी सघो था। ऐं उन खां अलावा बाक़ी जेके पढ़ियल आहिनि उहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नालो ॾिसी करे वठी अचनि था। सो तव्हां सभु वठो ऐं तव्हां सभु सुहिणा थियो। ऐं गानो आहे मेरा बाबू छेल सवेला, मैं तो नचूंगी।

गई थी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। तारिक भाई कहते कि ये सारे जनरल स्टोर गरीबाबाद सखर में है। ओके जी, जितने भी गरीबाबाद सखर वाले लोग सुन रहे हैं तो वो वहीं से जाकर परचेज कर आएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को। और जैन अली लिखते हैं कि सुनो जाना, आप वो हैं जिसे देखकर मेरे दिल के खाली टहनी पर फूल गुलाब के खिल जाते हैं, जिसे देखकर मुझे अपनी मर्जी के सारे मौसम मिल जाते हैं, और खामोशियों की जुबान समझ मेरा हाल क्या है मैं बयां करूं। अच्छा, मेरा हाल क्या मैं बयां करूं, क्या बात है जी, क्या बात है। और इकबाल भाई, आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, बढ़िया हो गया ये तो। अल्ताफ अली गादी बलूच, आप कराची से मैं सुन रहे हैं, निगत नाज का गाना सुनना चाहते, लाजमी सुनाएंगे जी। बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम हो गया। मुगल उमरानी हमारे साथ है, वेलकम हो गया जी भाई का। और अबासी हमारे साथ है, अबासी भाई कहते हैं फॉर यू सिद्रा। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपको वेलकम करते हैं। और रमजान भाई लिखते हैं कि तू महकता है मेरे दिल में गुलाब की तरह, तुझे पढ़ रखा है मैंने किताब की तरह, मेरे सवालों पर ये तेरी आंख के इशारे, सिद्रा बहन के नाम है कुछ कम नहीं किसी जवाब की तरह। वाह साई वाह, वाह साई वाह, एडी उड़ी शायरी मोकिलींदा, वरी ठा करे मुखे डेडिकेट करे चढ़ींदा। अच्छा है, बहुत अच्छा है।

अच्छा एडी मलानो हमारे साथ है खैरापुर मेरठ से, अलादिनो मलानो और मुमताज हुसैन फुलपोटो, वेरी नाइस योर प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच जी, आप सब भाइयों को वेलकम हो गया। किशोर भाई कहते हैं कि डोंट गो एनीवेयर, किशोर इज देयर, जय बुधायो। कहते टॉपिक कड़ो आए बाबा, टॉपिक तो बुद्ध होंद बाबा हाने। अब्दुल करीम गांगरो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलम। चाचो कहते हैं कि फहीम शेख झंडो मरी वारन के डी स्किन ब्यूटी क्रीम डियण वो आ अज चले, ये तो अच्छा हो गया। और किशोर भाई कहते हैं कि हाँ हाँ जवाब आए पर वायदो के लास्ट में जवाब नहीं पोविंदे। ये है भाई, मैं पता नहीं क्यों टॉपिक का जो जवाब होता है ना वो देकर नहीं जाती हूँ, ये मेरे अंदर पता नहीं क्यों बुरी आदत है। चले हाँ मैं कोशिश करूंगी कि जवाब बता कर जाऊं। निधि कहती है कि मैं अच्छा समझ गई मैं। निजाम भट्टी कादरी भाई वालेकुम अस्सलाम, मटियारी से आप हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम कहते हैं। कहते कैसी हो सिद्रा, मैं बहुत अच्छी, आप बताएं। दर्द दिल कहती है अच्छा हम लोग, हाँ जी बिल्कुल आप ही लोगों की बात हो रही है, और कौन है भला मेरी जिंदगी में। चलिए आप गाना एंजॉय कीजिए, टाइम हुआ है यहाँ पर न्यूज ब्रेक, और उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी तीन बजे तक, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 PM.
1: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6.
0: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
7: A product by Aksa Cosmetics Park.
8: अलिया मेट में मामला हल करने पहली तरजीह. माण्हुनि ॼाणे वाणे ॻाल्हियुनि खे नाकाम

ठाहियो पुल्क जो अमुन अस्तकाम पहिरीं तरजीह आहे असां पाकिस्तान जे थी रहिया आहियूं कंहिंजे वॾे वज़ीर वज़ारत बचाइण जी कोशिश करे रहियो पीडीआई जो लॉन्ग मार्च अटक वारी पुल पार करे न सघंदो सदर ऐं वज़ीर आज़म फ़ैसिलो कयो त केपीके में गवर्नर राज लागू थी वेंदो केपीके जे गवर्नर फैसल करीम कुली चयो आहे त हुननि वटि 20 लख माण्हू सलाहियत ई नाहे सोहेल आफ़रीदी जो सूबे ते कंट्रोल नाहे मुराद ते जे चवण ते हलंदो आहे यमन में सऊदी इतिहादी फ़ौज ऐं हुसी बाग़ियुनि में चकरियूं जारी हुसैन पारां सऊदी अरब ने आरामको खे निशानो बणाइण जी दावा यमनी सरकारी फोर्सिस मूजिब हुसैन इमदादी सामान खणी ते हमिलो कयो आहे जंहिं जे नतीजे में हिकु ॼणो शहीद थियो आहे जंगनि खे ख़बरदार करे छॾियो आहे अमेरिकी नाणे वारे वज़ारत इतलाह जे अमेरिकी पाबंदियुनि खे निजी बैंक से ईरान सां हर क़िस्म पाकिस्तान जे दौरे ते पहुतल गॾियल जे इस्लामाबाद में परॾेही आफ़ीस आमद

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
7: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

सफ़ा भलो भलो रिजल्ट मिली वेंदो। अगर तव्हां बि चाहियो था त बाबा असांखे ॿिनि रातिनि में रिज़ल्ट मिली वञे, अर्जेंट तव्हां काॾे वञो था या तव्हांजी शादी थियण वारी आहे, तव्हां चाहियो था त को सुठो प्रोडक्ट असां लॻायूं जंहिं शादी में असांजी स्किन जेका आहे न सभिनी खां भली नज़र अचे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे पंहिंजी स्किन खे प्रोटेक्ट बि कयो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेको वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स आहिनि, त इहे जेके आहे न वाइटमिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स, इहे तव्हांजे चेहरे ते जेको आहे न फेशियल वारो निखार ॾींदा आहिनि। छो त वाइटमिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स जेके आहिनि उहे वॾनि महांगा महांगा जेके फेशियल हूंदा आहिनि, जेके वीह हज़ारनि में मायूं कराईंदियूं आहिनि, उन्हनि फेशियल जे अंदरि इहे चीजूं एड थियल हूंदियूं आहिनि। त बाबा हाणे तव्हांखे जेको भलो प्रोडक्ट मिली रहियो आहे, एतिरो भलो प्रोडक्ट मिली रहियो आहे ऐं मुनासिब पैसनि में मिली रहियो आहे, तव्हांजो टाइम बि बची वेंदो ऐं तव्हां बस राति जो सुम्हण खां पहिरीं लॻाए छॾींदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे, त पोइ वाह वाह थी वेंदी। तव्हां लॻायो, ट्राए करे ॾिसो ऐं लॻाइण जा तरीक़ेकार छा आहिनि बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। छो त कुझु माण्हू वरी एतिरा मासूम हूंदा आहिनि, हिनखे लॻाइण असांखे को बि कमु कोन्हे को। जंहिंमहिल तव्हां पंहिंजे लाइ सोचो त बसि हाणे असां सिर्फ़ सुम्हणो आहे, कोई बि कमु न बचो आहे, त तव्हां सभ खां पहिरीं पंहिंजो फेस वॉश करे ईंदा। अच्छे तरीक़े सां अपना फेस वॉश कीजिएगा डी स्किन फेस वॉश से। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये क्या ही कमाल का है भाई, इतना रिच फार्मूला है ना ये, जब आप लगाएंगे तो आप कहेंगे हाय हाय मजो ही अची वो। ये तुम्हारी स्किन के अंदर ताई वेंदो आहे, तुम्हारी स्किन के डीपली क्लीन कंदो आहे, मॉइस्चराइज कंदो आहे, तुम्हारी स्किन के हाइड्रेट भी रखंदो आहे। खोड़ मानो जी आदत होंदी आहे तो वो पानी जेको आहे ना सफा घट यूज कंदा आहिनि पंहिंजे सजे ॾींहं ते, तव्हां ॾिसंदा त तव्हांजी स्किन जेका आहे न काफ़ी रुखी सुखी लॻंदी आहे, मुरझायल लॻंदी आहे ऐं ॼण ईअं लॻंदो आहे तव्हां बीमार बीमार आहियो। तो तव्हां हिकु त पाणी जो यूज़ जेको आहे प्रॉपर रखो, सही रखो, पाणी जो इस्तेमालु भलो कयो ऐं ॿियो त तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश जेको आहे न उहो पंहिंजे स्किन ते लॻायो, फेस वॉश कयो डी स्किन जे फेस वॉश सां, उन सां तव्हांजी स्किन हाई तरीक़े सां चेहरे खे सुखायो। उन खां पोइ तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे पंहिंजे चेहरे ते अप्लाई करे छॾियो ऐं डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न उहो तव्हांजे चेहरे ते ॾाढो फ़ाइदो छॾींदो। ऐं वरी जॾहिं तव्हां उबतो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे लॻाईंदा पोइ त साईं वाह वाह थी वेंदी। पर राति तव्हां इहो फार्मूलो ट्राए करे ॾिसो, तव्हांखे यकीन इलाही सुठा रिज़ल्ट मिलंदा ऐं तव्हां मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई लॻाए सघे थो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते बिल्कुलु अवेलेबल कराए छॾी आहे। हा ॿी ॻाल्हि त विसरी वई मूंखां, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां अप्लाई कयो न त इन चीज़ खां थोरो गुरेज़ कयो, त बाबा तव्हांखे मसाज जीअं ईअं मसाज न करिणो आहे चेहरे ते क्रीम लॻाए करे, कुझु माण्हुनि जी आदत हूंदी आहे, या वरी तव्हां इहो ॿुधो था त बाबा हिन में फेशियल जूं चीज़ूं अहिड़ी थियल आहिनि, त तव्हां वरी ईअं न त वियो साईं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे फेशियल करण, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे नाइट क्रीम जी तरह ही लॻाईंदा। ही बज़ाहिर त नाइट क्रीम आहे पर ही टू इन वन फार्मूलो आहे, तव्हां नाइट क्रीम जीअं इस्तेमालु कंदा, नाइट क्रीम जीअं आहे आसान तव्हांजी ज़िंदगी खे बणाए थी, पर हिन जे अंदरि जेके रिज़ल्ट तव्हांखे मिलंदा उहे फेशियल वारा मिलंदा। त तव्हां लॻायो क्रीम खे त आराम सां, प्यार सां, सुकून सां लॻायो ऐं पोइ तव्हां ॾिसंदा त तव्हांखे अहिड़ो भलो रिज़ल्ट मिली रहियो आहे। तव्हां सभु लॻायो ऐं सोणा सोणा थी वञो, पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो। ॾिसो असांजी टीम केतिरी महिनत करे रही आहे, तव्हांजो बि फर्ज़ बणिजे थो त तव्हां सुठा प्रोडक्ट लॻायो। ई जेके अजीब तरह जा प्रोडक्ट तव्हां लॻायो था, हुननि खे बाबा गुड बाय कयो, टाटा कयो। ऐं तव्हां वटि हाणे हिकिड़ो अहिड़ो प्रोडक्ट मौजूदु आहे जेको तव्हांखे मुनासिब क़ीमतुनि में बि मिली रहियो आहे ऐं तव्हांजी स्किन जे लाइ मुनासिब बि आहे। सो तव्हांखे नंबर से मथां राबितो करणो आहे, नंबर आहे जनाब 03 12 50 906 907 3512 5 9 0 6 9 0 7 3 12 50 5 9 0 6 9 0 7 3 12 50 5 9 0 6 9 0 7 ॿियो नंबर आहे 03 27 38 43 09 3232 74 84 309। ही ॿई नंबर तव्हांजे लाइ आहिनि, तव्हां हिन नंबर ते राबितो करे सघो था। तव्हां कॉल कयो या वरी तव्हां मैसेज कयो ऐं भाई साहब खे ॿुधायो त बाबा तव्हां किथां ॿुधो था प्रोग्राम।

हा किथे किथे बी स्किन ब्यूटी टीम खे अवेलेबल कराइणु खपे त हू अवेलेबल कराए छॾींदा। सो तव्हां अवेलेबल करायो, तसली सां सुकून सां वेही पंहिंजे चेहरे ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो ऐं पोइ ॾिसो त तव्हांखे केॾा भला रिज़ल्ट मिलंदा रहनि था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहो कमाल आहे जेको तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे मिलंदो। ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, बिना इस्तेमाल जे कीअं मिलंदो भला ॿुधायो मूंखे। इस्तेमालु करियो और खूबसूरत हो जाए। इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि कौन सा रंग है जो आप खाते हैं। हम खाते हैं, माँ भी खाईंदी आए, तां भी खाईंदा और सब खाईंदा है। तो आप मुझे बताएं जल्दी से कौन सा रंग है जो हम खाते हैं। और तव्हां मूंखे जॉइन कंदा बाबा 888-1 ते ऐं फेसबुक ते। अच्छा त जेके बि माण्हू मूंखे ॿुधनि था फेसबुक जे थ्रू, तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा कयो जीअं इलाही सारा माण्हू असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघनि, इलाही सारे माण्हुनि खे असां ॿुधाए सघूं त बाबा तव्हां बि ट्राए करे सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे लाइ बि फ़ाइदेमंद साबित थी सघे थी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज़ करते रहिए और ख़ूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

ओके जनाब, यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं, आपके फीडबैक्स हैं जो कि पैनल पर भी मुझे मिल चुके हैं, आपके कमेंट्स भी हैं, तो पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए एक बड़ा मस्त सा गाना है, तो आइए जरा ये मस्त सा गाना सुनते हैं और आप हमारे साथ साथ मौजूद हैं, मुझे बताइए और आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

के ओरिजिनल गाना जरा जोर से आ रहा है और हमारे साथ मौजूद है हमारी फजली, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम गुड आफ्टरनून बेस्ट आरजे शहजाद, कहती है कि सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स को फजली ने उगी ये। बशीराबाद मोरी से फैसल अहमदानी कहती है अस्सलाम वालेकुम अदी, केड़ा हाल है तुम्हारा, शो तुम्हारा लाजवाब है, थैंक यू सो मच प्यारा भाई।

तव्हांजी तव्हां बि सुहिणा लॻी सघो था, पर हिकिड़ी शर्त आहे त तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करणो पवंदो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं मूंखे ॿुधायो त तव्हां बि इस्तेमाल कई आहे, तव्हां वाॻे सुहिणा थी विया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी जेका ख़ासि ॻाल्हि आहे त बाबा इहा त तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद आहे ऐं तव्हांजी स्किन ते मेडिकेटेड फार्मूलो आहे ऐं तव्हांजी स्किन ते सफ़ा सूट कंदो, हर माण्हू लॻाए सघे थो। तव्हां बि लॻायो ऐं तव्हां बि लॻायो ऐं तव्हां बि लॻायो। अच्छा, ये हमारे साथ है सलाम सिडो जी, उस्ताद जी। मुझे कोई ऐसा है जब मैं घर से निकलूं तो वर्दी पहन के वापस आऊं, क्योंकि ग्रेजुएशन में बस 2 साल रह गए हैं। मेरे घर वाले डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे, मैं घर वालों को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि हालात कुछ ऐसे लेकिन अच्छा ऐसा वाला सीन है, आपने कुछ सही है। जिम्मेदारियां तो इंसान के ऊपर होती हैं, हर इंसान के ऊपर होती है ये चीज है, लेकिन थोड़ा सब्र से काम ले, सुकून से काम ले।

पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद घर वालों को बोलें कि हाँ भाई हाँ तमाम में उम्मीद रखी सको था तो पहले तमाम पढ़ा प्यो नहीं पढ़ाई के दौरान कोई जनाब डिस्टर्ब ना करे, तो अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से आप अपनी जो भी टेस्ट देना चाहते हैं उसमें आप अच्छे नंबर्स लें और अल्लाह पाक आप जो भी चाहते हैं ना वो आपको दे देंगे। बस उम्मीद होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए और तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा सागर न्यास जान रहे हो भाई, आप मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह का मैसेज क्यों कर रहे हैं। क्या हो गया, थोड़ा सटक गए। सुल्तानपुर खान अब्दुल गनी जूनी जो सलाम सिद्रा मुस्कान साहिबा शो लाजवाब है, जवाब आपने दिया है बिल्कुल जी, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। चाचा तुम भी गाने जी फरमाइश किया, ओके कहाँ जो गानों भी हलाइंदा सी। अच्छा गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ आज सिद्रा मुस्कान शो तुम्हारा जो लाजवाब है, सलाम तुम्हारे, वालेकुम असलम तुम्हारे।

ओके जी, मायरा हमारा शो सुन रही है. मायरा वालेकुम अस्सलाम. आप भी दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही है, क्या बात है जी. और जवेरिया हमारे साथ मौजूद है, हमारी प्यारी जवेरिया हमें लाड़काना से सुनती है. और जवेरिया भी दी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रही है, ये तो बढ़िया हो गया. और दिलरुबा क्या बात है, हमारी प्यारी थी नालो के डुबा. मैं कुछ कह नहीं सकता.

जो कभी मेरे थे। जी जी भाई, आप टेंशन ना लें, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले। तू बम मैं नहीं छू आया।

बिल्कुल सर, प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बुधा तो सही है तो तमते करो खबर तो पवे। आप इत बिरोही हमें सुन रहे हैं कहते इट्स सो गुड शो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी मैं लेकर आया हूँ कल, क्या बात है आबिद भाई, तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी आयो वाह थी वही वाह। और कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम कल ली है मैंने, जी जी अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा कर लिया। और जीशान हमें सुन रहे हैं, जीशान गोठ थारो थारो थरीचा खान, जबरदस्त प्रोग्राम आए, थैंक यू भाई। चाचो चाहे तो रात अच्छा तमाम शायद ही कहीं गोठ जो है कि तुम नालो लिखो है चौथा एक दोस्त के शॉपकीपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बजाय धोखे से बी क्रीम थमाए छी, स्ट्रेंज बट ट्रू आई ली। इसके ऊपर तो ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए। इस तरह के धोखे से बचिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाम लेकर तलब कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की डब्बी के ऊपर माई का फोटो, डॉक्टर माई का फोटो देकर ही परचेज करें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यह खास गाल आए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो डब्बी के मथा डॉक्टर माई जो फोटो आए, तमाम ये सब निशानियों डिसी करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम सही वारी परचेज करें, जो बाबा धोखन का बचो नकालों से होशियार रहे।

अच्छा कामरान खान हमें सुन रहे हैं मोरो से, और आपके अरमान जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो भाई साहब, जो लोग हमें मोरो से सुन रहे हैं वो अरमान जनरल स्टोर से जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और वफा शहजादो मक्सी हमें सुन रहे हैं लाड़काना से, प्रोग्राम जबरदस्त, थैंक यू। अली रजा लगारी भाई भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया भाई को वेलकम करते हैं। यहाँ पर टाइम हुआ है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, टाइम पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम, लगाइए और आप भी सुंदर हो जाइए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरना रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस और झुरन के घट कन और रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम और ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

वाह वाह आज के हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब सखरण मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरण मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाई स्टेशन जी इज कम्युनिटी शो.

ओके जी, शाजिया मारवी की आवाज में मैंने गाना लगा लिया। ये सिंगर मैंने आज अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखी और सुनी। जी जी, आप लोगों की मेहरबानियां है। बहुत अच्छा गाना, और गाना एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ। जिस भाई ने डेडिकेट किया

तो एंजॉय कीजिए. कमेंट आएगा तो हम उनका नाम भी ले लेंगे. लेकिन मैंने गाना लगा लिया है. और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं तो मुझे बताएं, अब आपकी बारी. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए ना. अच्छा था सोचो, इतरो सोचो अच्छा बाबा. डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है वनो झट सा वी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना शुरू करो.

क्या बात है जी, क्या बात है, बढ़िया हो गया ये तो, बहुत अच्छा गाना। और साथ साथ आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है जनाब, आप लोगों की मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और आप साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराते जा रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के ऊपर इस तरह से वर्क कर रही है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो डी स्किन का फेस वॉश भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे डी स्किन का फेस वॉश तो सारे लोग ही लगा सकते हैं, यानी कि इसमें ऐसा सीन नहीं कि भाई आप सिर्फ टीनेजर्स के लिए है या एजेड लोगों के लिए है। फेस वॉश की जब बात आती है तो उसे आप बच्चे भी लगा सकते हैं, जो लड़कियां होती हैं, छोटी लड़कियां, वो भी लगा सकती हैं, मर्द हजरात सब कोई लगा सकते हैं। तो डी स्किन का फेस वॉश आप सब लोग अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और डी स्किन फेस वॉश से आप अपना फेस वॉश करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

जी क्या बात है, बहुत अच्छा खूबसूरत सा गाना जो कि हमने एंजॉय किया और साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरती की बात हो और जनाब स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है बाबू भाई। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले हैं तो जल्दी से लगाइए, और आजकल हर कोई चाहता ना कि भाई उसके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएं जो कि भाई ऐसा हो कि लगाने के बाद आके चेहरे की स्किन जो है वो खूबसूरत भी होती रहे, आके चेहरे पर प्रोटेक्शन भी रहे, और आके चेहरे पर जो है ना कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आए। ये चीज बहुत अच्छी है, आप ऐसा ही सोचा करें, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो क्यों परचेज कर रहे हैं। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जानब आते हैं, डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश की जानब आते हैं, तो ये बेहतरीन बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो तो इसका जो फायदा आप लोगों को मिलने वाला है वो ये कि भाई आप लोगों के चेहरे पर खूबसूरती भी आती रहेगी, खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे ना तो आपको मिलेगा ऐसा निखार, ऐसी खूबसूरती जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फारबुटीन है, कोचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें एड की गई है जनाब जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को ये तमाम चीजें जो है ना वो बहुत खास बना देती हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जिंदगी में जब शामिल होगी तो आपको भी खास बना देगी, क्योंकि आपके चेहरे पर इतना कमाल का हुसन आ चुका होगा। तो ट्राई करके देखिए और हमेशा के लिए सीन हो जाएंगे। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपने फेस वॉश जो है ना वो लाजमी परचेज करना है। अगर आपके करीबी जनरल स्टोर के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है लेकिन फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो दोनों चीजें अगर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जो नंबर्स आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उनके ऊपर रब्ता करना मत भूलिएगा। रब्ता कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए और इजिली वहां से जाकर परचेज करते रहिए। तो वैसे तो हर जगह अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन फेस वॉश की थोड़ी सी ये बात है कि वो थोड़ा अभी बना है ना, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि कहाँ कहाँ पर कहीं कहीं पर अवेलेबल नहीं हुआ होगा। तो आप नंबर्स के ऊपर राबता करके अपने करीबी जनरल स्टोर के ऊपर फेस वॉश को भी अवेलेबल कराते रहिए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और साथ में डी स्किन का फेस वॉश लगाइए, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ट्राई करके देखिए आपको मजे आ जाएंगे।

ओके जी, ये जो खूबसूरत गाना हमने लगाया है ये हमारी प्यारी लुबी को डेडिकेट जाता है और गाना एंजॉय करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हैं जी हमारी प्यारी लुबी, कहती है अस्सलाम वालेकुम सिडू जानी, क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ, बहुत टाइम बाद आज फिर से शामिल हूँ और आपके प्यारे शो में मैंने बहुत मिस किया था आपको और आपके शो को भी। थैंक यू सो मच जाना, गाना एंजॉय करें।

हा भाई ये नकंदा कयो ये नकंदा कयो भला बार थियो इन डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। अच्छा अब्दुल्ला महर भाई क्या कहते हैं कि मीरपुर खास से आपने मुझे ज्वाइन किया है, कहते कि आज हमारे पास बैलेंस नहीं था, लोन उठाकर आपके प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जियो लोन। हाँ जी, अच्छा किया आपने, बस ये आपकी मौजूदगियाँ जो थी ना ये हमें आपका गुलाम बना देती है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं बताते हैं कि हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं और आपका होना प्रोग्राम में चार चांद लगा देता है, तो आप सारे लोग अगर प्रोग्राम सुनते हैं तो शामिल प्रोग्राम हो जाया करें। और अब्दुल्ला भाई की तो क्या ही बात है, बैलेंस नहीं था तो लोन उठा के भी मुझे मैसेज कर दिया। जियो बाबा, तमाम भी जियो। और लुबी तमाम आंसर डिनो आहे, ओके हो गया जी। और किशोर भाई हमारे साथ हैं, थांकू थांकू। दर्दी दिल कहती है फॉर यू, कोई आपसे इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि आप बहुत खूबसूरत हैं, और ना ही इसलिए करता है कि आप वफादार हैं, बल्कि वो आपसे इसलिए मोहब्बत करता है कि आप उनकी निस्फे रूह और आधा दिमाग और पूरा दिल होते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, ये वैसे सही बात है। वो मुझे वैसे गुरु जी की बात याद आ गई, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। क्या है आप में, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, ये सोचने वाली बात है। और आप जरा सोचिएगा और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। स्मार्टो गोपाल कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, आई एम लिसनिंग योर शो इन कंपर्सिटी, वेरी वेरी नाइस वॉइस, प्लीज प्ले सॉन्ग मंजूर सखिराणी। ॾिसां थी टाइम बची तो तव्हां लाइ हलाए वठूं था। और नज़र मोहम्मद भट्टी भाई में सुन रहे, कहते कोई जन्नत का तलबगार है तो कोई गम से परेशान है, जरूरत सजदे करवाती है जनाब, इबादत कौन करता है। हाय, अब मैं क्या ही बोलूं इसके ऊपर। चलिए आप हमें मटियारी से ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। कहते गाना चलाए दुश्मनी है क्या, अरे भाई नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं है, और मैंने वो सिंगर सुनी आज पहली मर्तबा, तो बता दिया करें नए नए सिंगर्स के बारे में ताकि हम प्रोग्राम में लगा सके, अच्छा गाना था वैसे उनका।

रही थी, बिल्कुल मुझे पता नहीं है कि मैं ऐसी क्यों हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ अच्छा अली रज़ा लगारी भाई तवाजो मोहब्बत में तव प्रोग्राम के पसंद कयो पया ऐसन कहते हैं कि सोमा तू स्पीड पेंजी ओ सोना घट कर सठ कर ले कुछ घट कर मथे में सूर पवंदी या गाल बिल्कुल ता सही चई आए ऐसन मुखे लगे पे ता निगत जो गानो बुधन चाहियो था पर अजो निगत के थोड़ो मोकल ते मोकलियो आए सैया निगत वही आए दी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण समझो था ऐसो जॾहिं वठी ईंदी न त पोइ सुभाणे निगत खे हलाईंदासीं बाबा धमाकनि सां दौलत धमामनि सां और अबासी भाई कहते हैं कि फॉर यू मुस्कान ओगे अबासी भाई आप बस समझ गए इतना मेरे लिए काफी है बहुत शुक्रिया आपका प्यासी निगाहों में जी जी असां रोज कोन रसंदा आहियूं असां भला ॿार आहियूं असां रसंदा ई न आहियूं तव्हां ॾिठो आहे एतिरनि सालनि मां मां कंहिंखां रुठी हुजां कंहिंखां बि न रुसण जेको आहे न पसंदि ई न आहे असांखे और रशीद कोसो भाईअ में सुन रहे हैं हैदराबाद से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी और लुबी की पसंद का गाना था हां जी बिल्कुल और रशीद कोसो भाई तव्हांजो मोहबतूं आहिनि लुबी कहते हैं नाइस सॉन्ग शीला गुलका थैंक यू सो मच जॉय किया आई एम सो हैप्पी जी आप खुशी रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बताइए अर्जी भुट्टो में मिल रही है नहीं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने सब फ्रेंड्स को भी मशवरा दीजिए कि वो भी परचेज करें क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे भाई इजीली आप सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास क्वालिटी है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है तो आपके लिए ये भी कोई टेंशन की बात नहीं होगी कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है हम कोई प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके सारे मसलों का हल है आप इस्तेमाल कीजिए और शोने शोने हो जाइए

ते रसनी त वेठी बि हिकु हूंदी न न अहिड़ी ॻाल्हि बि कोन्हे का, अहिड़ी ॻाल्हि बि कोन्हे का, तव्हां आयो न किशोर भाई कहते हैं कि अदा बैंक मां लोन खणी तुझे शादी में ईंदुस जरूर आई ली डाथो राखंदो मन मुझे मथा पर हिकड़ो कम कयो हाणे तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो इन लाइ तव्हांखे लोन वठण जी ज़रूरत न पवंदी मुनासिब पैसनि में तव्हांखे मिली रही आहे अच्छा फहीम भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम मदर मां भी अची वयम लास्ट लिंक में अदा अखी हाने खुली आ इन करे गुड मॉर्निंग ओके जी तां के गुड मॉर्निंग में भसी इंजॉय

ओके जी, सो गाना खत्म हो चुका है एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट गाना जो कि मैंने आप लोगों को है सुनवाना और ये होगा जी शायद बबर की आवाज में गाना। इस गाने की मुझे चाची ने फरमाइश कर दी तो

आंखा मोकल बैठे, आप तो यंग भाई ओल्ड गाय कोशिश ना कर। और यहाँ पर इजाजत वाले प्रोग्राम में पांच ओ हीरो सरो ख्याल रखना, कहते का गलती थी, उसे तो माजरत कहूँ था, वो फीडबैक रही थी वही वाहे को गानड़ो शानड़ो रही थी वह तो बाबा माजरत मोकलानी ना ही सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: PM दिस टाइम एट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बाय विष्णु।
2: अब आप GAFM नेटवर्क पर
3: Brought to you by
4: H Beauty Cream.
3: A product by Aksa Cosmetics, Pakistan.

0: एक मतलब फिर बदकिस्मती से ये धर्मों के और लॉन्ग मार्चेस के भयानक साए हैं वो दोबारा नमोजार हो रहे हैं।
1: नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसको हम इंशाला नहीं होने देंगे, किसी जरूर नहीं होने देंगे। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा इंशाला, हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाला हम हर तरीके से उसको हम इंशाला उसको इंश्योर करेंगे। मैं भी उनको कहूंगा कि आप अपनी रोज के नाकों को क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी या फायदा पहुंचाएगी, ये पूरी कौम इस बात से आगाह है। मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप होश के नाखून लें, इस आप अपनी लॉन्ग मार्च को धरनों को आप इसको खत्म करें और खत्म करेंगे तो हम यकीनन आपके साथ बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे।
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीटीआई के धरणनि जी सियासत छॾण जो मशवरो ॾेई छॾियो। लॉन्ग मार्च ख़त्म करण जी सूरत में ॿीहर ॻाल्हियूं करण जी दावत बि ॾेई छॾी। इस्लामाबाद में तकरीर खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त धरणे ऐं लॉन्ग मार्च वारी सियासत जो पहिरियों निशानो दहशत हूंदी आहे। हुकूमत नेक नियतीअ सां पीटीआई सां ॻाल्हियूं कयूं, छा मुआशरे खे ॿीहर रोकण मुल्क दुश्मनी नाहे। पीटीआई वारा होश खां कम वठनि, लॉन्ग मार्च ख़त्म कनि त ॿीहर ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं।
3: रियासत बिल्कुल माँ होती है लेकिन रियासत को बाप का रोल भी करना पड़ता है। बिगड़े बिगड़े बच्चे और ऐसे लोग जो माँ के प्यार से या माँ की इज्जत से खेल रहे हैं, जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हो माँ को, तो वो फिर बाप का जो एक रोल है वो भी करेंगे। और इस रोल को पहले भी किया है, कायम होती है। जो जब चलती थी तो सारी रियासत जो थी वो एक कांप रही होती थी, सारा निजाम रुका होता था। कहां है आज रियासत का फैसला है और उस फैसले के बाद है कोई, ये रियासत का फैसला है। वो टीएलपी हो, वो पीटीआई हो, वो कोई और जमात हो, नो नॉनसेंस।

0: रियासत बिल्कुल माउ आहे, कॾहिं कॾहिं रियासत खे पीउ जो किरदार बि अदा करणो पवंदो आहे। मुल्क इतलाल चौधरी चयो आहे त ॿुधायो किथे आहे TLP जेका हलंदी हुई त समूरो निज़ाम रुकजी वेंदो हो, हाणे किथे आहे रियासत जो फ़ैसिलो त TLP हुजे या का ॿी जमायत कंहिंखे बि बेवकूफ़ी करण न ॾिनी वेंदी। KP खे बाबति आइन मामलनि ते मुशावरत थी रही आहे, पहिरीं तरजीह ॻाल्हियूं ऐं सियासी हल आहे। लॉन्ग मार्च लाइ सियासी इंतज़ामी समेत हर क़िस्म जो इंतज़ाम कयो आहे। पंजाब हुकूमत सूबे में कलम 144 लागू करे छॾियो। समूरे पंजाब में 10 ॾींहनि लाइ जलसनि जुलूसनि इजमाननि ते पाबंदी हूंदी। KPK जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त PTI जो लॉन्ग मार्च अटक वारी पुल पार करे न सघंदो। सदर ऐं वज़ीर आज़म फैसलो कयो त KPK में गवर्नर राज लागू थी वेंदो। हुननि वटि 20 लख माण्हू गॾु करण जी सलाहियती नाहे। सुहेल आफ़रीदीअ जो सूबे ते कंट्रोल नाहे, मुराद सैफ जे चवण ते हलंदो आहे। इतिहादी फ़ौज ऐं हूसी बाग़नि में चकरियूं जारी। हूसियुनि पारां सऊदी अरब में तेल कंपनी आरामको खे निशानो बणाइण जी दावा ॾिनी। सरकारी फोर्स मूजिबि हूसियुनि इमदादी सामान खणी ईंदड़ ट्रक ते हमिलो कयो आहे, जंहिं जे नतीजे में हिकु ॼणो शहीद थियो आहे। हूसियुनि सऊदी अरब में 3 हंधनि ते हमलनि जी दावा कई आहे। ईरान सां लेती बंदि कयो। ॿी सूरत में पाबंदियुनि लाइ तयारु रहो, अमेरिका निजी बैंकनि खे ख़बरदार करे छॾियो। अमेरिकी नाणे वारे वज़ारत मूजिबि ईरान सां लेती कंदड़ निजी बैंक्स खे बिना कंहिं इतलाउ जे अमेरिकी पाबंदियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। निजी बैंक्स ईरान सां हर क़िस्म जी लेती फौरी तौर बंदि कनि। पाकिस्तान जे दौरे ते पहुतल गडि॒यल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल जी इस्लामाबाद परे आफ़िस आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान जे दौरे ते पहुतल सेक्रेटरी जनरल जी आदर भाव कयो। मुलाक़ात दौरान ग़ज़ा समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। जनरल सेक्रेटरी पारां खिते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्ताननि खे कोशिश जी वाखाण। रबे जे मुंद लाइ सूबनि में पाणी विर्छ बाबति इरसा जी सलाहकारी कमेटीअ जो इजलास। पाणी जे विर्छ बाबति अहम फ़ैसलनि जो इम्कान। इरसा जी सलाहकारी कमेटीअ जो इजलास चेयरमैन अमजद जी सदारत हेठि जारी। रबे जे मुंद दौरान चइनि ई सूबनि में पाणी जी विर्छ बाबति अहम फ़ैसला कया वेंदा ऐं सूबनि में पाणी प्लान विरायो वेंदो। मकामी सीड़पकार मुल्क में सीड़पकारी कंदा त परॾेही सीड़प बि वधंदी। हुकूमत मुआशी तरक़ीअ सां गॾु बरामदाद में वाद खे तरजीह ॾेई रही आहे। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त सीड़पकारी ऐं मुआशी तरक़ीअ लाइ हुकूमत ऐं निजी शोबे खे गॾिजी कमु करणो पवंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर राणा तनवीर हुसैन ऐं राणा सनाउला जी सदारत हेठि कणक कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। आरनि खे मुआशी तौर मज़बूत करण ऐं ज़रई पैदावार वधाइण लाइ हथ जी सब्सिडी अंटर करार। राणा तनवीर चयो आहे त हारनि खे संदन महिनत जो मुनासिब मुआवज़ो ॾियण लाइ मुनासिब इमदादी अघु ज़रूरी आहे। ज़रूरतूं पूरियूं करण ऐं ग़िज़ाई तहफ़ुज़ यकीनी बणाइण लाइ कणक जी घणी पैदावार तरजीह आहे। कणक जो अघु मुक़ररु करण ते वफ़ाक़ ऐं सूबनि विच में क़ौमी इतफ़ाक़ राय ज़रूरी आहे। KPK जे इलाइक़े डेरा इस्माइल खान में FBR जे 4 अहलकारनि समेत 5 ॼणा शहीद। DI खान पुलिस मूजिबि अभाया पुल वेझो हथियारबंदनि जी गाॾीअ ते फायरिंग। 4 शहीद थिया। बनून रोड ते ट्रैफिक संभालींदड़ अहलकार खे बि शहीद कयो वियो। पुलिस इलाइक़े में सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो KPK जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। 5 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया, 2 ज़ख़्मी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान में ॻुझी इतलाउ ते फोर्सिस दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन जे नतीजे में 5 खारजी दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई।
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, Munfarid aur Jadeed formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dinon mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: Matiyari ke ho to awaaz bhi matiyari ki hai. Sunte raho GAFM 91.6.
3: Finally अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने

0: कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
0: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
0: सुपर वाइट।
2: खुशखबरी खुशखबरी परेशान छण जी का भे जे करे तहा के भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे त उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद

0: शाम 5 बजे ताई जुमो मोकला आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेक्स्ट।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: प्यारी एफएम
1: धरती से जुड़ा है लाल जीए नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: रियासत बिल्कुल माँ होती है, लेकिन रियासत

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जी एफ एम 88 नेटवर्क ते।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: टकी लाइ सोचे रहा आयो
1: तो जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन एक अड़ो एफ एम रेडियो आए
0: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: असांजी दुआ है तो सदाई तारन में चंड हुजो, खीर में खंड हुजो, मेवन में अंबू हुजो, आई कदें बावा जी मुर्क मेरी न थिए। सदाई अवां जे लुड़कन जो डुकार ऐं मुर्कन जो सुकार हुजे, शाल अवां खे कोसो अवां न लगे, शाल अवां डुखियो ॾींहुं न ॾिसो, जुग जुग जीओ मुर्कंदा महकंदा ऐं गुलनि जीअं टिड़ंदा रहो। मौज़ सामेन ही आहे जीए FM 88 रेडियो नेटवर्क जो, जीए FM मीरपुर खास, GFM सखर, GFM लाड़कानु, GFM मोरो, GFM मेहरापुर, GFM सकरंड। GFM मटियारी ऐं GFM मातली जो आवाज़ हाज़िर आहे अव्हां जो पंहिंजो शो सिंधड़ीअ जी शाम।

ऐं सिंधड़ीअ जी शाम में यूनिस बकारीअ जा सलाम। जी मज़े सां मई यकीन अॼु अवां सां अवां जूं ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं ऐं अवां मैसेज करे सघो था जेकर शामिल थियण चाहियो था त टाइप करियो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो। पंहिंजो नालो लिखो 888-881 ते मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो। असां आबदा परवीन जी हिन सॉन्ग खां पोइ तव्हां सां मिलूं था थोरी देर में। मुंहिंजा मैसेज शामिल करण लाइ इछो मां वापसि थो अचां।

जी जनाब, वेलकम बलिकार, खुश आमदीद। ही आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क। अवने पनी शो तमा बुधो प्या सिंधड़ी जी शाम है। सिंधड़ी जी शाम में सके भरियो सलाम है। अवन जी मोहब्बतूं प्यार है पंजाय वजह रंग खणी। अवन जी खिदमत में हाजिर यूनिस बकारी। मोहब्बतुन जी महफिल जारी ओसारी। जी मज़ी सामाइन, जेकर अवां शामिल थियण चाहियो था त हाणे ई मैसेज मोकिलियो। लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-881 असांजो नंबर आहे, उन ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। असीं ॾिसंदासीं त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो। ॻोठ मोहम्मद यूसुफ खासकेली खां रशीद अली खासकेली ॿुधे पियो। मिठा माण्हू, तमामु घणी महिरबानी, भलीकार। तव्हां लिखियो सलाम, वालेकुम असलाम, तमामु घणी महिरबानी। किरोड़े कुर्ब अव्हां जा ख़ुश हुजो ऐं आबाद हुजो मोहबतूं। ख़ालिद नोतकाणी असांखे जॉइन कयो आहे मातली शहर खां। लिखियो आहे त ज़बरदस्त सॉन्ग, अच्छा तमामु घणी मोहबतूं साईं। जी जनाब, साज़ ऐं आवाज़ ऐं साथ में अव्हां जूं ॻाल्हियूं अव्हां सां। झलूरी खां ख़ालिक लाशारी, शो VIP आहे, लिखे थो तमामु घणी मोहबतूं। ऐं तालके साले पट खबड़ी भिट खां इरफान अली थेबो साहब ॿुधे पियो। इरफान भलीकार। ॻोठ पुनू खान पंवर खां असांखे रोस्तम अली पंवर साहब जॉइन कयो। अव्हां जूं तमामु घणी मोहबतूं साईं। जाम लगारी खां असांखे जॉइन कयो आहे अली रज़ा लगारी, आकिब लगारी ऐं अज़हर लगारी। अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानी। ॿुढाजी ग़ुलाम ख़ासकेली लग झंडो मरी खां असांखे जॉइन कयो आहे क़ुर्बान अली ख़ासकेली। तमामु घणियूं महिरबानी, मोहबतूं क़ुर्बान। आलम खान जरवार खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार ॿुधे पियो ऐं महिरबानी। ॻोठ ग़ुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी, महबूब नाज़ जलालाणी, मुख़्तियार नाज़ जलालाणी, आरज़ू असलम जलालाणी लिखियो आहे अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम असलाम, मोहबतूं मिठा माण्हू, किरोड़े कुर्ब अव्हां जा।

सुल्तान चांडियो साहब असा ज्वाइन कर चुको है। सुल्तान मोहब्बतू तमाम घड़ी मेहरबानी गोठ हाजी सुल्तान लुंड खां प्यार अली लुंड बुधे पे भली कार GFM 88 रेडियो नेटवर्क। जी जनाब सांस है आवाज है साथ हमें जबरदस्त ट्रैक पाबो वीरो थरपारकर खां दिलीप कुमार मेघवाड़ नोवल राय दानिश कुमार सूरज गुल शंकर लाल चवंदा शो लाजवाब अच्छा मेहरबानी मोहब्बतू साईं

सनम मारवी जी सदा हवाओं में गूंजे पई अमाबदो पे GFM 88 रेडियो नेटवर्क के ही ट्रैक बुधंदा हलदासी ऐ उन का पे कमर्शियल ब्रेक हुंदो उन कमर्शियल ब्रेक का पो वापस इंदासी सोब बिना ब्रेक सो जनाब प्रोग्राम है जारी ओ सारी नन्डे ब्रेक का पो वापस इंदो अवां जो पेंजो यूनुस बकारी के रहना वंच

0: ट्रेंड के हो तो आवाज भी ट्रेंड की है। GFM 88 नेटवर्क ट्रेंड की आवाज।
1: चाहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवहां जी स्किन की बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवहां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर माथली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है।

जे बाबत खां शौकत अली जखराणी साहब जो आयन कयो रहमत अली जखराणी सां गॾु तव्हां लिखियो त प्रोग्राम पसंदि आहे मोहबतूं अवां जो आहिनि साईं मिठा माण्हू महिरबानी कुंडरी खां चोहन कुमार कोहली डॉक्टर अनीता चौहान ऐं संगीता पारस खे मैसेज पहुतो अवां जूं तमामु घणी महिरबानी भलीकार जी मज़े सामईन यकीन असां छह वॻे खां पोइ तव्हांजो लाइव कॉल्स वठंदासीं तेसीं ताईं तव्हां मैसेज मोकिलियो लिखो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं सेंड कयो 88 81 111 ते टंडे ग़ुलाम हैदर जे ॻोठ जी जनाब रहीम अली चांग जे ॻोठ मां असांखे ज्वाइन कयो आहे चेतन परमार अवांजी तमामु घणी महिरबानी चेतन परमार अवां सां गॾु अवां जो सन ॿुधे थो महिरबानी जी जनाब उन जो नालो आहे अवां जे पुटड़े जो करन परमार ओके वेलकम चवंदासीं तव्हांखे ऐं बेबी हिना परमार ॿुधे पई अवां जो बि तमामु घणी महिरबानी तव्हां लिखियो सर यूनिस क्या हाल आहे मां बिल्कुलु ठीकु आहियां तव्हां ख़ुशि आहियो चङा भला मतारा जोड़ ऐं उमीद आहे त तव्हां ख़ुशबाश हूंदव ऐं हशाश वशाश जी मज़े साईं असांजो आवाज़ तव्हां ताईं पहुचंदो हूंदो ऐं हा बिल्कुलु पहुचंदो हूंदो तव्हां ॿुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे GFM मीरपुर ख़ास GFM लाड़काणो GFM सखर GFM मोरो GFM मेहरापुर GFM सकरंड GFM मटियारी ऐं GFM मातली खे हिकु ई वक़्तु तव्हां करायो पिया।

जी मदर सामिन जेकॾहिं असां अव्हां पाण सभई गॾिजी कंदासीं अॼु कुर्ब जी कचहरी ऐं हाल अहिवाल कंदासीं त तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था किथां किथां कहिड़े शहर वाइण वस्ती ऐं बस्ती मां ॿुधो पिया सो बसि तव्हांजे हिकिड़े मैसेज जो ओसी अहिड़ो हूंदो इंतज़ार हूंदो जेके माण्हू इंटरनेट जे थ्रू असांखे पूरी दुनिया में कनाइनि पिया उन्हनि जूं महिरबानी जी एफ एम एच एट रेडियो नेटवर्क जी ऑफिशियल लिंक ते तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे त वेलकम

ॾींहुं वज़ी समय तव्हांजे लाइ हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक असांजे क्यू शीट में शामिल आहे ऐं उहो यकीन ॿुधाईंदासीं, पर हिकु दफ़ो ॿुधायूं त 5 मिंट बाक़ी आहिनि वञी मैसेज शामिल करण जा। ठीकु, 6 वॻे असां न्यूज़ ॿुधंदासीं ऐं 6 वॻे जी न्यूज़ खां पोइ जेको कमर्शियल ब्रेक हूंदो उन खां पोइ तमामु नेटवर्क ते तव्हां सभिनी मौज़ूदु ॿुधंदड़नि साण हूंदासीं लाइव कॉल्स ते। फिलहाल ट्रैक ऐं ब्रेक जी हा त पए साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में प्रोग्राम आहे जारी ओ सारी। नंढड़े ब्रेक खां पोइ अव्हां सां गॾु हूंदो अव्हांजो पंहिंजो यूनुस बकारी।

0: रब जाने केसी ताई तुंजा मूसा वेर हुंदा।
1: रब जाने केसी ताई तुंजा मूसा वेर हुंदा।
0: इन ट्रैक के एंजॉय कयो ए ट्रैक बदले बदले न्यूज ब्रेक ला हलंदा सी खबरन क पे वापस बाकी खबरू चारों कंदा सी पूरो कलाक सो 6 बजे का 7 बजे।

असां सभु आवाम वालो जवाबदार आहियूं। आवाम खे ॾिसणु घुर्जे त संदन चूंडियल नुमाइंदा संदन लाइ कम करे रहिया आहिनि या नाकद करे रहिया आहिनि। वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो आहे त आवाम ॾिसे त हिकु तरफ़ चूंडियल नुमाइंदो आहे जेको हिकु महीनो ऑफिस नथो वञे, न ई को इजलास आहे। ॿिए तरफ़ अहिड़ो शख़्स आहे जेको ॾींहुं कम करे रहियो आहे। आवाम खे दरख़्वास्त कंदुसि त ज़रूर ॾिसनि संदन चूंडियल नुमाइंदा किथे वक़्तु विञाए रहिया आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो

0: टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकला आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
1: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: जीए FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

वाधो जो सेवण साईं जी सरकार यानी असां के सेवण शरीफ का याद कयो जी मेहरबानियूं पवर साहब थैंक यू ऐं ॾिसंदासीं हाणे असां केर थो ॿुधे ऐं केर थो कॉल करे त हुन जे लाइ हलंदासीं कॉल जे तरफ़ ऐं कॉल अटेंड करे वठंदासीं हैलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे जखराणी साहब अलहमदुल्ला अवां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे सभिनी जूं महिरबानी वॾा वड़ साईं थैंक यू भलीकार

0: ॾिसंदासीं काल ते असां सां गॾु केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब ऐं किथां खां? जी नज़ीर अहमद बंगरे साहब, आवाज़ अचे पियो?
1: बिल्कुलु आवाज़ अचे पियो साईं। क्लियर तमामु। ॾखिणनि जी हवाऊं थधी थधियूं, फर्स्ट क्लास थियूं हलनि सखर ताईं।
0: हा, रोहिड़ी सखर जा कहिड़ा हाल आहिनि?
1: रोहिड़ी सखर बिल्कुलु ख़ुशि पियो लॻे। सिंधु दरिया किनारे करी करी वेंदा आहियूं, तमामु मज़ो ईंदो आहे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: रहमत अली ऐं शौकत अली जखाने सां।
0: जी जी,
1: इरफान थेबो आहे, क़ुर्बान ऐं शाह खेली आहे।
0: वालेकुम अस्सलाम। ओके जनाब, साज़ ऐं आवाज़ प्यार ऐं

0: भला बिन मिनटन जो अमा के गानो बुधराए ब्रेक वठा कमर्शियल ब्रेक का वापस अचू भला चलो हिकड़ी कॉल अटेंड क्यों था उनका कमर्शियल ब्रेक दौरान प्लीज प्लीज कॉल न कजो वरी जड़े वेलकम चाह तने कॉल कजो काफी मेहरबान ब्रेक दौरान कॉल करना शिकायत करना तो कॉल खड़ी न तो भला ब्रेक में खड़ दस तो फायदो चलो डिसी था वठो तो कॉल ते केर है हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम यूनुस साहब कुंदरी सा चोन कुमार कोली को बनाया
0: शाह हाल है चोन कुमार साहब खुश आयो ठीक आयो अलहमदुल्ला मुख्य ब्रेक वो चवन तकड़ा दोस्त या नाला वी सो था
1: बस प्रोग्राम बुधूँ पे दोस्त इन पास थर की बिटन में गुलाब गुल भील बुधे पे दिलीप मेघवार रुस्तम पवार के चवन पवार कोली की तरफा सलाम
0: वालेकुम
1: ब्रेक मिसाई वो
0: थैंक यू खुश हुजो आबाद हुजो ओके जनाब ट्रैक है मास्टर मंजूर आवाज है मुझे कबर से लिखी छो मुसा यार वफा न कई इन ट्रैक के बुधना बुधना ब्रेक था वी वो कमर्शियल ब्रेक का बिना ब्रेक यूनिस बकारी गड हों साज आवाज साथ असा गड रहो अद कलाक जो बाकी

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चावरन की खूबियों एंड कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी की लॉक करे एंड चावरन की खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन की घट कर एंड रिंकल्स की घट करे सिर्फ टिन ईहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अब प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज
4: GA FM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: Pascal Khan.
1: तमाम घणी मोहबतू साईं, तव्हां सभिनी जूं महिरबानियूं लखत वारा। केर हूंदो जेको असां काल ते शामिल थींदो, हुन जे लाइ बिल्कुलु कॉल अची रही आहे, मुसलसल कॉल्स जो तइदादु वधी रहियो आहे। ॾिसंदासीं त हाणे केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला, अव्हां केरु साहिब ऐं किथां खां? रामचंद कुमार कोहली साहब नोटो थरपारकर खां खुश आयो। ठीक आयो जी। जी शुक्र आहे। अवी सदाई सुखिया हुजो या दुआ आहे। अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे? तमामु घणी मोहबतूं, महिरबानी, किरोड़े कुर्ब। जी मज़े सामईन, वक्त कीअं पियो गुज़रे ख़बर पवे कोन थी, छो त अव्हां सां गॾु हूंदासीं, किथे वक़्त जी ख़बर पवंदी। हलूं था काल जे तरफ़, ॾिसूं था काल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: साईं। केरु साहिब ऐं किथां खां? छा हाल आहे अयाज़ अली भट्टो साहिब? अलाह पाक जा किरोड़े करम आहिनि। अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी जी जी जी जी जी जी
2: मुंहिंजे
1: महिरबानी सर। थैंक यू, थैंक यू।

0: जी हलड़ी किस्मत मुखे केदो सतायो
1: केदो से कायो थई यार छे नई मुख प्यार
0: काल ते केरा दिसी दाटू हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम गोट बाबू वेरो तरपार कर का दिलीप कुमार बेगवाड़
0: छा हाल है साईं जी शुक्र अलहमदुल्ला वहाँ से कद भी केर पे बुदे
2: रामचंद
0: मेहरबानी वालेकुम असलाम।

0: किस्मत के मयारूं डिबियूं गालियूं कबियूं पर कालुन ते गालियूं कबियूं केरों दो काल ते उन जिले डिसुंदा केर है सदा करे हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: केर साहब ए किथा का
1: गुलाम रे बलोच जुर्गी का यनो साईं
0: छाला मिठा मानो अलहमदुल्लाह वहाँ जी दुआ होने वहाँ सकते भी केर भी बुदे बस बजे ना बुदे वाह वाह डाहो बार है थोड़ा डाना ला बटना ला मेहरबानी सही थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके किस्मत के मयारूं पर कॉल है पेंजन पेंजन में केर शामिल हों दो उन जिले कॉल के ऑन करे था दिसूं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह केर साहब है किता का
1: काचे गुलाम हर चांडे को मन सिर चांडे को गुलाम
0: चाला चांडे साहब खुश आयो ठीक आयो अल्लाह पाक जा किरण कर में नवा सकर भी केर पे उदे
1: सबको
0: जी बुधन सभी सलाम पहुंची हुआ किरोड़े कृपया।

12 मिंटन जे बाकी साथ में असन जो साथ भी हुंदो उन का पोए साईं मुजा कॉल ते दिसना सी केर आहे असन सा गड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज अचे पियो साईं? हेलो। अच्छा जी, शायद कॉल करण वारे वट नेटवर्क

0: जी फरजाना परवीन जी आवाज में ही ट्रैक बुदुम प्यार दिसुदा कॉल ते के रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सरकार वाले प्यारे जोर खैर
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह केर साहब है कि था का
1: सखी शादी वाने जे बारे में गोठे गोठ खबर बिल का रामचंद्र उदासी।
0: रामचंद्र उदासी साहब खुश आयो जल्दी नाला वटी वेटो। अच्छा मागी कॉल में आवाज ही हलो वो है शायद नेटवर्क। जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क के मेरपुर खास सखर लाड़काने मोरे मेरापुर सकरंट मातली ही मटियारी जे गडेल आवाज के वहां कनायो पिया। शो जो नालो है सिंधड़ी जी शाम आई अमा जो आर जी अमा समखाते भाई यूनुस बकारी काल ते केर हुंदो दिसु था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी केर साहब है किता का
2: साजन वाला चितर बोलको
0: छाला चांडियो साहब खुश आयो
2: केर रहमान दो।
0: हां अमा सकर भी केर पे बुदे मीठा मानू
2: जी मैं भाव आज चांडियो है मंजूर चांडियो बो नजर हुसैन चांडियो है मैं प्री प्यारो भाव बाबर हुसैन चांडियो
0: सबनी मिठन माणन के भलीकार।
2: थैंक यू सर।
0: थैंक यू। दोस्तों मेहरबानो कदरदानो गालियों कंदे कंदे वक्त गुजर है बाकी असान वक्त घणो बचो ताके बुधाई बैठा वक्त तमाम थोरडो बचो टोटल 8-9 मिनट बचे है। सुंदा काल ते केर आहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम केर साहब आई किथा का
3: असद खान चांडियो तो गला की सर जबल खान
0: खीर सर जबल खान असद खान चांडियो वेलकम चंदा सी वहां से कर भी केर पे बुदे
3: सबको बुदे वो भाईर जदी खसा ता पार्टी
0: सबनी जो मेहरबानी हूं ता सबनी भाईरन दोस्तन जो मेहरबानी लखत हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह सबनी जो मेहरबानी साईं मेहरबानी।

0: posi sur Java al principio. Cal te que rehni sida utmalo assalamu alaikum. Keer sahab hai kitha ka? Mithi tharpar kar kha Malik Muhammad Baloch sahab ke welcome tha chao. मां थोराए तो आया तवां जो यकीनन मुझे ले खुशी जड़ी गाल है त जेकरे मुझे करे मुझे कोशिश से करे या मुझे नेटवर्क जी पेशकश से करे मुझे इन इदारे जे करे के खुशी मिले थी त जीएफएम 88 तवां
1: के खबर आ त इन नौसानौसी जे दौर में केदा मान के टेंशन परेशानी
0: बिल्कुल
1: तवां के ई बकला के पुछंदा आयो त सब कुछ विचारे
0: साईं असान जे जको जीएफएम 88 नेटवर्क कहे उन जी कोशिश भी यही है त अस पने बुधंदड़न जे हर दुख सुख जा धणी हो जों भली दोस्तन जे नाला वठी वठो
1: दिलीप कुमार आए रामचंद मकवाणो आए रोस्तम पवार आए साईं मामा सिंधी पाड़ो आए नाल नगर खान जमाली प्यार
0: वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम किरोड़े कुर्ब साईं किरोड़े कुर्ब जी दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरो भाईरो GFM Mir Prakash, GFM Matli, GFM Matyari, GFM Mehrapur, GFM Moro, GFM Sakrant, GFM Ladkano and GFM Sakhar Joka de la Vas. Call the Disnasi Kera hai, asa sakar, hello, assalamu alaikum, balke call drop thi vahiya hai. जी जनाब एक दफा बेहर कॉल जुड़ी चुकी है केर हूं असा सा डी वो हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केर साईं
2: पठान खान पचके वालों घर कश्मीर का
0: साईं मिठा मानू पठान खान पचके वाला साईं भली कर
2: मेहरबानी मोहब्बतों तेरा अल्लाह ताके शादाबाद रखे तो जो प्रोग्राम है लश पशु हूं साईं
0: हां प्रोग्राम लश पशु हूं मां तां जो थोराए तो आया बस पठान खान पटके वारे के वणी व्यासी तो जग जहान के वणी वेंदा से
2: बिल्कुल हर लिसनर के दिल में जायो आया साईं बिल्कुल
0: बिल्कुल
2: मानो जो हर मानो सा लिसनर रो तो मोहब्बत कदा
0: हां साईं बस ये असा जी ड्यूटी है असी मोहब्बत वाला बोल बोलींदा सी तदे ही त असा के जीए में जायो मिलंदियो आमीन आमीन सुम आमीन दोस्तन जे नाला खण दो
2: हां दोस्त क्रिकेट आ रहा था के कुछ मुदिन था इलाही यार मन तो मंगरे हुआ
0: जी
2: रामत्री चक्कर नहीं क्यों

0: सर जे बल बजा जब मैं मुझे तो दूंगा मत दातानिया रोस्तम पावरा बाकी जैसे फ्री करा मुझे का कुर्बान खास के लिए पौरो खान मरी सजिए के सलाम सर मेहरबानी
1: वालेकुम असलाम किरोड़े कुर्बे मिठा मानू किरोड़े कुर्बे साईं पठान खान पटके वारे साहब जी मोहब्बत वारी कॉल लगी वही वाह दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरों ए भारो बाकी पंज मिनटन जो साथ हो तो जैसी जीअर आयो गद अवे नाले आयो पर आवाज सफर में असो अवे साथ पंज मिनटन जो बाकी बचो कॉल अटेंड कर दूसरा केर है हलो अस्सलाम वालेकुम
2: सर वालेकुम सलाम
1: साईं केर साहब किथा का
2: किथर जब लगा मंजूर चांडियो
1: मंजूर चांडियो साहब अवे गद केर पे बुधे
2: मुझा भाई साधु चांडियो बाबर चांडियो असद चांडियो
1: जी जी
2: आजिक चांडियो नजर हुसैन चांडियो
1: जी जी
2: सही बस ये
1: तमाम घनी मेहरबानी लख थोरा मिठा मानो किरोड़े कुर्बत आ जाए।